राइट, मैं हूँ अवि, आपका कंपनी कर रहा हूँ ऑन द वेव्स ऑफ हम, और अभी से लेकर 6 तक ये कारोबार चलता रहेगा। जबकि अभी समय की ओर देखते हैं तो ठीक 1 बज रहे हैं हमारे स्टूडियोज में, और दोपहर आपके लिए रहेगा समाचार। इसावा भी आपको स्वागत करते हैं हमारे शो में, जिसका नाम है जस्ट चिल। आपको ये भी याद दिला दे, जबकि 7 नवम्बर को यहाँ न्यूजीलैंड में इलेक्शन होने को है, तो ऐसे में नेशनल और साथ में लेबा की जो कैंपेन है ये आज से शुरू होने वाली है। आज इसको लॉन्च किया जाएगा, और जबकि आरएनजेड ने रिपोर्ट किया है कि सेंट्रल ओकलैंड में जो पार्टी लीडर है क्रिस्टोफर लक्सन, ये आज लॉन्च करेंगे, और लॉन्च पे शायद ये डायरेक्ट अटैक करे लेबर पर, या फिर कुछ और जो प्रपोजल्स है या फिर वादे हैं कैंपेन्स के दौरान ये प्रॉमिस करेंगे। ऑन द अदर हैंड, हाँ, ऑन द अदर हैंड जो लेबर के लीडर है, शायद ये साउथ आइलैंड में अपने जो कैंपेन है इसको लॉन्च करेंगे क्रिस हिपकिंस, और ये पब्लिक के सामने अभी 2 हफ्ते पहले ही अपने कैंपेन के लिए नज़र आए थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा था कि आई एम जस्ट गेटिंग वॉर्म्ड अप, तो यहाँ पर शायद कुछ और प्रपोजल्स है अपनी पार्टी की ओर से ये देंगे क्रिस हिपकिंस साउथ ओकलैंड में आज। लेकिन जबकि 2023 में हिपकिंस ने कैंपेन को स्टार्ट किया था, और उनका एक प्रपोजल था जहां पर इन्होंने प्रॉमिस किया था फ्री डेंटल केयर फॉर एवरीवन अंडर 30। आज क्या कुछ प्रपोजल्स होंगे आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपना जो मन है ये बना सके कम द इलेक्शन डे विच इज़ 7 नवम्बर। तो आप कान खुले रखें, सुनते रहिए, और इन्हीं मुद्दों पर बातें करते हैं सेंडी और रुजबे लेकर आते हैं एवरी थर्सडे आपके लिए कोई एक पार्टी लीडर को, ताकि इन प्रपोजल्स, उनके पार्टी प्रपोजल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। तो अगर जो आप वो भी सुनना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने लास्ट वीक बात किया था नेशनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, और यहाँ पर उन्होंने बातें की थी नवतेज रंधावा के साथ में, जो कि कैंपेन मैनेजर है फॉर नेशनल पार्टी इन मनेरेवा और ओटाहू एरिया में, तो इनसे सवाल किया गया था कि इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर नेशनल क्या सोचता है, और उनके जो इम्पैक्ट होते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर कम्युनिटीज पर, इसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है, क्या कहना है। साथ में जो हेल्थ केयर स्टाफिंग को लेकर चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है हेल्थ केयर में, जितने डिलेज है अपॉइंटमेंट्स को लेकर, पेशेंट्स की जो लंबी लाइंस है, इनको लेकर बातें की गई हैं। तो अगर जो आप वो सभी कुछ सुनना चाहते हैं तो ड्राइव लिखकर 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और बारी बारी से जैसे ही डेट्स नज़दीक आएंगे और भी पार्टी कैंडिडेट्स को लेकर आया जाएगा, ताकि और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। ये सभी कुछ हमारे साथ में ऑन द वेव्स ऑफ हम, जहां पर आपके लिए हम एंटरटेनमेंट तो लाते ही है, लेकिन कुछ ज़रूरी मुद्दे पर भी बात करते हैं।

हम पर मैं हूँ अभी आपका साथी दोपहर स्ट्रेट आफ्टर न्यूज आपके लिए लेकर आऊंगा एपिक बॉलीवुड चैलेंज जहां पर एक और एक गाना हमने आपके लिए आज सेलेक्ट किया है। लेकिन अभी के लिए एक प्रॉब्लम है, मेरे पास में एक म्यूजिक बॉक्स है जो लॉक्ड है। अब उसका जो कीज़ है मेरे पास में नहीं है, उसके कोड्स मेरे पास में नहीं है। आई एम ट्राइंग टू क्रैक इट ओपन और अभी तक मैंने जो सीक्वेंस में नंबर्स ऐड किए हैं ये है 3, 6, 12 और 24 और कोड्स को एक्सेप्ट कर लिए गए हैं लेकिन आखिरी जो नंबर है सिर्फ डालना बाकी है जिसके बाद में ये सेफ खुल जाएगा। तो एक बार फिर से जो सीक्वेंस है 3, 6, 12 और 24, तो आप हमें ये बताएं कि जो कोड है इसका आखिरी नंबर क्या होगा। नंबर्स का गेम है, अभी तक जो नंबर्स एक्सेप्ट किए गए हैं 3, 6, 12 और 24, तो आखिरी नंबर इस सेफ को खोलने के लिए कौन सा मैं डालूं, आपको यही 5599 पर हमारे पास में भेजना है अपने नाम के साथ में।

नहीं होगा, इसीलिए आपका हेल्प चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ है जिसको मुझे खोलना है। कुछ कोड्स एक्सेप्ट कर लिया गया है जिनमें शामिल है 3, 6, 12 और 24। अब आखिरी नंबर है जो मुझे डालना है ताकि ये सेफ खुल सके। आप मुझे बताइए कि इस सीक्वेंस में आखिरी नंबर कौन सा रहेगा। जो अभी तक एक्सेप्ट हुए नंबर्स हैं इनमें शामिल है 3, 6, 12 एंड 24। तो जो आखिरी डिजिट है, जो आखिरी नंबर है, ये क्या हो सकता है? 5599 पर टेक्स्ट करो अपने नाम के साथ में, और अगर जो कुछ आप सुनना चाहते हो, कोई गाना सुनना चाहते हो, उसी मैसेज में डाल दो, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो सीक्वेंस एक बार फिर से, 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। आखिरी नंबर कौन सा डालूँ आप मुझे ये बताएं। 5599 पर।

Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: Andrusby on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: There's a new kind of goodness in the Peter.

0: $10 cash. Ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
1: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile, or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
2: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
3: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enrol by midnight 4 October, so don't leave it too late.
4: Get your EasyVote card. Enrol by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
5: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
6: Just chill.
7: जशिल में अभी के साथ है और जो सवाल किया था हमने कि आपको सीक्वेंस भेजने थे तो इलेक्ट्रॉनिक सेफ का कोड द नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6 आया फिर 12 आया फिर 12 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 24 आया और इसी तरह से जो लास्ट नंबर की तलाश थी वो थी 48 जिसका जवाब हमारे पास में राहुल नाम तो सुना होगा इन्होंने भेजा है साथ में हेतल ने भेजा है रिया ने भेजा है और साथ में माला ने हमारे पास में मैसेज किया है थैंक यू सो मच गाइज सुनने के लिए और साथ में खेलने के लिए हमारे साथ में और माला ने मौके पर चौका मारा है इसके साथ में एक गाने की भी रिक्वेस्ट आपने भेजा है जो आपके लिए बस बजाने वाला हूँ कमिंग अप नेक्स्ट फ्रॉम ब्लॉकबस्टर सैयारा

आप सुन रहे हैं हम पर, मैं हूं आपका साथी अभी। हमने कहा था आपसे बताएंगे, शेयर करेंगे कि कहां पर आप जाकर स्कूल हॉलीडेज में बच्चों के लिए जो प्रोग्राम्स है, हॉलीडे प्रोग्राम्स, कहां पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पाकुरंगा प्लाजा, यहां पर स्कूल हॉलीडे फन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, आपके बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इन द कीवर्ड इज फ्री, बिल्कुल मुफ्त में आपके लिए ये स्केड्यूल किया गया है। जो वीक वन है, यहाँ पर डेली आपके बच्चों के एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। वीक वन यानी कि कल से शुरू होता है, 1 PM से लेकर 3 PM तक यहाँ पर फ्लावर फेरी शो रहेगा। उसके बाद में ट्यूजडे को 1 PM से लेकर 3 PM तक क्लाउन शो प्लस बलून्स ये रहेगा। वेंसडे 30 सितंबर को उसी समय पर 1 PM से लेकर 3 PM तक साइंस शो रहेगा। और थर्सडे 1 अक्टूबर को रहेगा चीयर लीडिंग शो। साथ में फ्राइडे 2 अक्टूबर को रहेगा 1 PM से लेकर 3 PM तक फेस पेंटिंग। तो पूरा का पूरा यहाँ पर स्केड्यूल बनाया गया है, बच्चे घर बैठे बैठे भी बोर हो जाएंगे। तो अगर जो आपसे हो सके और आप ईस्ट ओकलैंड में रहते हैं तो पाकुरंगा प्लाजा आप जा सकते हैं, जहाँ पर लोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, स्कूल हॉलीडे फन है, प्रोग्राम्स है, बिल्कुल फ्री। और अगर जो आप इसे वेबसाइट पर जाकर ढूंढना चाहते हैं, स्केड्यूल को ढूंढना चाहते हैं, तो पाकुरंगा प्लाजा के वेबसाइट पर जाइए। जो प्रोग्राम है बिल्कुल लिस्टेड है, वीक वन का भी और वीक टू का भी। समय रहा तो आपको वीक टू का भी स्केड्यूल बताएंगे और ढूंढेंगे कि कौन कौन से और शहरों में, यानी कि कौन कौन से ओकलैंड के सबर्ब्स में क्या क्या हॉलीडे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जहां पर बच्चे जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस ओनली ऑन हम, क्योंकि हम कंसर्न्ड है कि आपके बच्चों के लिए जो छुट्टियाँ हैं ये अच्छी तरह से बीते।

0: of Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो.
5: अभी ब्रांड हो गया ना.
4: रुजबे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J Crew.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
8: Hey, still house hunting next weekend?
9: No, hopefully not. Going to an auction tomorrow.
8: Whoa, how did you sort things so quickly?
9: Oh, my BNZ home loan partner, Jane, met her last Saturday, got her home loan sorted, and she's even calling tonight, so we're ready for the auction.
8: All that from one person.
10: Go direct to a BNZ home loan partner and deal with the decision maker from search to settlement. Bank of New Zealand. Let's find a way. All home loans are subject to BNZ lending criteria, minimum equity requirements and terms and conditions. Up to a $150 establishment fee and other fees may apply.
11: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
12: Spring just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: Just chill.
1: 4 मिनट बाकी है 2 बजने में, 2 पर आपके लिए रहेगा न्यूज, और न्यूज के सीधे बाद आपके साथ में खेलेंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी हम पर आपका साथ दे रहा हूँ और समय की ओर देखते हैं तो 2:02 हो चुके हैं. ऐसे में अब इस मोड़ पर आए हैं जहाँ पर आपके साथ में खेलेंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज जो एवरी वीक आपके साथ में विदाउट फेल लेकर आते हैं इसी समय पर जहाँ पर एक इंटरेक्टिव अपॉर्चुनिटी आपके पास में रहती है. एक खेल होता है जिसे आप खेल सकते हैं By identifying a song, जिसके बारे में हम आपको क्लूज देंगे उस फिल्म की कहानी के बारे में भी आपको डिटेल्स देंगे. बेस्ड ऑन दोज क्लूज आपको पहचानना होता है कि कौन सा गाना है और 5599 पर जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करके मैसेज करता है वही उस वीक का कंपटीशन का विनर ठहराता है. जैसे लास्ट वीक हमारे कंपटीशन को जीता था एश ने वेलिंगटन से जबकि बादशाह का टाइटल ट्रैक उन्होंने पहचाना था. तो आज भी एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग है आपके लिए. 5599 इज द नंबर याद रहे और फ्लेक्स योर फिंगर्स. जबकि समय इतना ही है कि जब हम क्लूज बताना शुरू करें और गाना बजाने से पहले का जो बीच में समय है इतने ही दौरान आपको अपना जो जवाब है हमारे पास में भेजना होता है. तो हियर इट गोज. आज जिस सॉन्ग को हमने चूज किया है वो एक टाइटल ट्रैक है फ्रॉम 2007 की फिल्म डायरेक्टेड बाय डेविड धवन. प्रोड्यूस किया है सोहेल खान प्रोडक्शंस ने और ये कहानी है भास्कर दिवाकर चौधरी और प्रेम की. फिल्म की प्लॉट जहां एक ऑर्डिनरी नॉर्मल एम्प्लॉई को अपने बॉस से प्यार हो जाता है बट शी इज़ आउट ऑफ लीग फॉर हिम. तो अपनी बॉस की नज़रों में आने के लिए उसको पटाने के लिए उसको मदद लेनी पड़ती है एक लव गुरु की. पूरी फिल्म इस कहानी पर रिवॉल्व करती है और एक टोटल एंटरटेनर है. जो बॉस है उसको प्ले किया है अ वेरी यंग डैशिंग कैटरीना कैफ ने. लव गुरु का एक अलग लव ट्रैक है इस फिल्म में वेयर ही फॉल्स फॉर लारा दत्तस कैरेक्टर. इस फिल्म को एक हॉलीवुड की फिल्म हिच से कॉपी किया गया था और इसीलिए फिल्म को बनने के बाद कॉपीराइट इश्यूज हो गए थे जिसे बड़ी मुश्किल से सॉल्व किया गया. इस फिल्म में राजपाल यादव भी है छोटा डॉन के रोल में और उनके कैरेक्टर छोटा डॉन को लेकर काफ़ी मीम्स भी बनी है. यानी कि ये रोल उनके लिए लाइफ टाइम में काफ़ी फेमस हो गया है. जो दो मेन लीड्स है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. एक जिसने लव गुरु प्ले किया है फुली फिट और आज भी इतना फिट है कि अपनी एक शो अभी हाल ही में जो वो होस्ट करते हैं अपनी टी शर्ट निकाल कर नेशनल टेलीविज़न पर आ जाते हैं शो के दौरान. इस फिल्म में इनका नाम प्रेम है और ये सूरज बरजातिया के भी ओरिजिनल प्रेम है. दूसरा एक्टर जिसको आपने भास्कर दिवाकर चौधरी के रोल में देखा है इज नोन फॉर हिज एक्सलेंट कॉमिक टाइमिंग डांसिंग स्किल्स और डायलॉग डिलीवरी. इन्होंने डेविड धवन के साथ में 17 फिल्में किए हैं और मोस्ट ऑफ देम वे ब्लॉकबस्टर्स. आजकल इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ट्रबल्स चल रही हैं एक मच यंगर एक्ट्रेस को लेकर. आए दिन कहीं ना कहीं आप कुछ नया रील्स देखते हैं. मेरे ख्याल से अभी के लिए इतने हिंट्स काफ़ी है दोनों हीरोज को आइडेंटिफाई करने के लिए. इन दोनों एक्ट्रेस को पहले साथ में आपने सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस में देखा होगा. फिल्मों जैसे दीवाना मस्ताना की क्लाइमेक्स में ये साथ में थे और 2007 की एक और एक फिल्म सलाम इश्क में इनका ब्रीफ स्क्रीन टाइम था साथ में. लेकिन ये पहली और आखिरी उनकी फुल फ्लेश्ड रोल्स थी. इस फिल्म का टाइटल ट्रैक एक्सप्रेस इन दोनों की कैरेक्टर्स की पार्टनरशिप एंड एट द सेम टाइम कि ये कितने अलग है एक दूसरे से ये भी दर्शाती है. एक फिट कूल विद अ स्वैग और दूसरा एकदम देसी फन लिविंग. म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने. तो अगर जो आपको पता लगता है 5599 पर अपने जवाब आप भेज सकते हैं. भास्कर का रोल किया है गोविंदा ने और प्रेम के रोल में आपने देखा सलमान खान को. ये एक ऐसी फिल्म है जहां गोविंदा की करियर को स्टार्डम दोनों डाउनहिल थी. यानी कि करियर और स्टार्डम दोनों डाउनहिल पर थी तब इस समय का उस दौर का इनको ये फिल्म मिला था. इस फिल्म ने एक कामयाबी भी दिलाई थी लेकिन बाद में उनके करियर को काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हुए. ऑन द अदर हैंड इस फिल्म के बाद सलमान ने काउंटलेस ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं 2007 के बाद में और उनका जो स्टार स्टेटस लेवल है ये अलग लेवल पर चला गया था. गोविंदा को इस फिल्म के लिए ढेर सारे अवार्ड्स भी दिए गए. बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर. तो याद रहे एक फिल्म की टाइटल ट्रैक है और आपको जवाब भेजना है 5599 पर। 2007 की ये फिल्म और अब आपको गाना सुनवाने जा रहे हैं।

आज यही था इस चैलेंज का गाना और आपने सही पहचाना जितने लोगों ने जवाब दिया। अगर जो आप एक एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा फॉर अ संडे इवनिंग। अगर जो आप पार्टनर देखना चाहते हैं और इसके साथ में काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया था, डेजी आपका भी जवाब आया, साथ में रफीक और इनके अलावा रकुल आपने भी जवाब भेजा, शबनम, सचिन, अमन आपका भी मैसेज आया है और फाल्गुनी काफ़ी दिनों के बाद में आपका भी मैसेज आया लेकिन आपने गलत गाने को पहचान लिया। इसके साथ में 0722 आपका भी जवाब आया, 4691 आपने भी मैसेज किया, साथ में 90560 आपने भी जवाब भेजा, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहला जो जवाब आज हमारे पास में आया था ये था तेश का। तेश ने जवाब भेजा, गाना भी पहचाना, थैंक यू सो मच, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू तेश फॉर आइडेंटिफाइंग द सॉन्ग। अगले वीक एक बार फिर कोई एक नया चैलेंज आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए आप लोगों के नाम पर ये गीत अरमान मलिक की आवाज़ में, थैंक यू वंस अगेन।

हम पर आप सुन रहे थे कुमार शानू को, और आपको बता दूं जबकि आज है 27th ऑफ सितंबर, तो 30th ऑफ सितंबर से यहाँ न्यूजीलैंड में, खासकर ओकलैंड में जो 11 सनातन वर्ल्ड कप है ये शुरू होने वाली है, जहाँ पर ढेर सारी टीम्स अभी आ भी गई होंगी जबकि 30th से टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, तो काफ़ी टीम्स है जो आ भी गई होगी। लेकिन फिजी से टीम्स आ रही हैं, साथ में ऑस्ट्रेलिया से टीम्स आ रही हैं, कैनेडा से भी रिप्रेजेंट करने टीम्स पहुँच रहे हैं, साथ में USA से भी टीम्स आ रही हैं। और इसके अलावा फुटबॉल जो आप अगर जो फॉलो करते हैं तो फुटबॉल आप देख सकते हैं, सोका देख सकते हैं बिल मैकिनली पार्क में, साथ में फ्लैटबुश के बेरी केटिस पार्क में और ओमिस्टन ग्राउंड्स पर। इसके अलावा आप के लिए नेटबॉल गेम्स भी रहेंगे, गोल्फ़ भी पहली बार मेरे ख्याल से इसको शामिल किया गया है, और वॉलीबॉल है, नेटबॉल है, ये सभी गेम्स चलती रहेंगी। लेकिन 30th सितंबर को जो ऑफिशियल ओपनिंग रहेगी झंडा बंधन के साथ में, ये बिल मैकिनली पार्क पर शाम को रहेगी अराउंड 7, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन 30th ऑफ सितंबर से एक स्पोर्ट्स फेस्टिविटी जैसा माहौल छा जाएगा, जबकि 11 सनातन वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स ये शुरू होगी।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
5: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, Chef Alex?
4: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
5: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
4: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
5: 100% authentic and pure as mother's love.
6: Come and sell.

0: $5 cash. Ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
1: India comes to town. Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
2: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
3: Zabardast hits.
4: Shuru ho jaye to rukte nahi.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
5: हम पर मैं हूँ अभी कीपिंग यू कंपनी और अगला गाना बजाने से पहले जो कि एक वर्जन जिसका आपने सुना था मिर्जापुर द मूवी में आपको बता दूं कि ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि मिर्जापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर डे 22 पर कुछ 325 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किए हैं तो एक ऐसी फ्रेंचाइज जो बिल्कुल लोगों को पसंद है एंड इट हैज़ डन अ बिजनेस ऑफ ग्लोबली 325 करोड़ अगर जो अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए या फिर आपने चेकआउट किया है तो मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी मैंने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा हालांकि जो सीजन्स थे मैंने पूरे के पूरे फॉलो किए लेकिन आई हैवन्ट हैड द अपॉर्चुनिटी कि ये फिल्म में जाकर चेकआउट कर सकूं लेकिन मैं अब सोच रहा हूं कि जब ये OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी तब उसी बार मैं इसको देखूंगा लेकिन इन द मीन टाइम आपने अगर जो इस फिल्म को इन्जॉय किया है तो 5599 पर मैसेज करके बताएं हमें कि आपको कैसा लगा

0: Bollywood.
1: पूछो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywood's biggest hits.

हम पर इट्स 20 मिनट्स अवे फ्रॉम टी टाइम, यानी कि 20 मिनट बाकी है 3 बजने में. और मैं जबकि कुछ समाचार पढ़ रहा था तो 5 लकी पंटर्स ने जीता है $200,000, जबकि सरन नाइट को ये लोटो ड्रॉ हुआ. पावरबॉल जैकपॉट को जीता नहीं गया है, अब ये हो गया है $12 million फॉर कमिंग वेंसडे. तो अगर जो आप खेलते हैं, बेस्ट ऑफ लक आपको. क्या आपने कभी कुछ जीता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ. मैंने अपने इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में जब मैं देख रहा था तो मैंने एक बार जीता था फ्यूल सप्लाई फॉर अ ईयर. ये फिजी में फ्यूल कंपनी ने एक प्रमोशन रन किया था, उस वक्त मुझे मेरे हाथ लगा था ये विनिंग टिकट, जहां पर फ्यूल सप्लाई फॉर अय्या मैंने जीता था. उसके साथ में एक बार मैंने कुछ $10-15 जीते थे लोटो में, और लेकिन उसके बाद में फिर कुछ खास मैंने नहीं विन किया है. मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने कभी कुछ जीता है कुछ प्रमोशंस में, या फिर ऐसे लोटो प्राइजेस आपने जीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कितना अमाउंट आपने जीता है. कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी लकी होते हैं एंड दे कीप विनिंग. तो अगर जो आप उनमें से एक है, आप हमारे साथ में अपने विनिंग्स के बारे में शेयर करना चाहते हैं तो 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आई वुड लाइक टू टॉक टू समवन 0800-004-866 पर आप कॉल कर सकते हैं. When I said I would like to talk to someone, ऐसा लगा कि बिल्कुल अकेला हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, आपसे बातें करके भी अच्छा लगेगा. 0800-004-866 पर आप कॉल करके बता सकते हैं कि अगर जो आपने कभी कुछ जीता है प्रमोशन के तहत, या फिर लोटो में कुछ आपने डिसेंट अमाउंट जीता है, या फिर कोई छोटे रकम मेरी तरह भी जीता है $10-15 तक, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, ओनली ऑन हम.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: Auckland, time's running out to make your emergency plan this daylight saving weekend. What would you do if extreme heat caused a power outage? How would you get home if the bridge is closed in a storm? If you received a tsunami warning, where would you go? Take the time this weekend to sit down and make an emergency plan. Brought to you by Auckland Emergency Management and Auckland Council. Make your plan at aem.govt.nz.
6: Taking part in the 2026 general election feels easier when you know what to expect. If you are disabled, a caregiver or a support person, then you may have questions about the accessible options available to enrol and vote. Join one of our online sessions to get practical information and ask the questions that matter to you. Find session details at vote.nz or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
7: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting the grandparents. But Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.
8: Get the kids creating these school holidays with free arts and crafts workshops at Warehouse Stationery. From making slime or clay craft to creating loom band jewellery, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.co.nz.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: हम पर रवि के साथ है और किसी ने अपनी विनिंग स्टोरीज हमारे साथ में शेयर नहीं किया, कोई बात नहीं। और दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ये जारी है, अगर जो आप भी सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुबई में, तो ये आज सुबह से 10 बजे से शुरू हुई है, रात 8 तक ये चलती रहेगी एट JW मेरियट इन ओकलैंड। अगर जो आप जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं अबाउट रियल इस्टेट और साथ में हाउ थिंग्स रन इन दुबई, तो ये जो प्रॉपर्टी एक्सपो है इज़ एन आइडियल प्लेस टू गो टू। तो याद रहे JW मेरियट ओकलैंड में ये चल रहा है रात 8 तक, जहां पर आप भी जा सकते हैं। और आप अगर जो अपने विनिंग स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं कि कुछ आपने कभी जीता है डिसेंट अमाउंट या फिर कुछ बड़ा, तो 5599 पर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं या फिर 0800004866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, जब मैं विनिंग की बात करता हूँ, इट्स नॉट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट एट होम। जो कुछ प्रमोशंस आपने जीते हैं उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जिसके बारे में आप 5599 या फिर 0800004866 पर कॉल करके बातें कर सकते हैं।

हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जो एनपीसी का राउंड 9 का मैच है वेकातो और साथ में वेलिंगटन के बीच में, हाफ टाइम तक वेकातो की जीत वेलिंगटन से 21 पॉइंट्स टू 5 से हो रही है।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: 10 a.m.
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
6: It's the one you've been waiting for. Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected big brand clothing, footwear and more. Big brand, big savings. Get into Rebel Sport today. These deals and so much more. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enroll by midnight 4 October. So don't leave it too late.
8: Get your EasyVote card. Enroll by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
9: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
10: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
11: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
12: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
13: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
14: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
15: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में। बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 एएम टू 8 पीएम। देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अप टू 20% आरओआई, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट डीएलडी डिफर्ड। डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन। रजिस्टर नाउ, विजिट बिलकैप्स.com। प्रमोटेड बाय वेबटाइगर।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर समय की ओर देखते हैं तो इट्स जस्ट आफ्टर 3 एंड वी आर हाफ वे थ्रू द शो, जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। तो चलो ऐसे में इस आवा की शुरुआत करते हैं एक स्पोर्ट्स क्वेश्चन को लेकर। एक खेल है जहां पर इस खेल को खेला जाता है एक टेबल पर, एक टेबल गेम है और इस खेल में 6 पॉकेट्स होते हैं और साथ में 2 डंडे होते हैं, चोक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो ये क्लूज हमने आपको दिया है, दे आर 6 पॉकेट्स और साथ में डंडों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में चोक का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे ये बताइए 5599 पर इस खेल का क्या नाम है।

हम्पर मैं अभी लेकर आया हूँ आपके लिए एक स्पोर्ट क्वेश्चन, जबकि मैंने कहा है कि एक स्पोर्ट है जहाँ पर उसे टेबल पर खेला जाता है और सिक्स पॉकेट्स होते हैं, स्टिक्स होते हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना होता है, साथ में चोक होता है वो भी आप यूज़ करते हैं, एंड दे आर सम बॉल्स जो आपको पॉकेट में डालने होते हैं एंड दे आर नंबर्ड। इस स्पोर्ट का क्या नाम है अगर जो आपको अंदाज़ा लगता है 5599 पर मेरे पास में आप जवाब भेजें अपने नाम के साथ में। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे लिसनर्स में से कितने लोग इस स्पोर्ट को खेलते हैं या फिर जानते हैं। तो एक टेबल गेम है जिनमें सिक्स पॉकेट्स है, स्टिक्स है और एक चोक का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बॉल्स है जिनमें नंबर्स लिखे हैं और आपको उन बॉल्स को स्कोर करना होता है इन द पॉकेट्स। 5599 Playing Bollywood's biggest hit.

3:11 हो चुके हैं, आपने कुमार शानू की आवाज़ में सुना एक बहुत ही खूबसूरत गीत। और जबकि टी टाइम हो गया होगा, आप भी अपने चाय का मज़ा ले रहे हैं, तो ऐसे में 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। जो सवाल हमने किया था जिस गेम के बारे में, जहां पर इसे टेबल पर खेला जाता है विथ 6 पॉकेट्स और स्टिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ में चोक और कुछ नंबर बोल्स होते हैं, तो अभी तक सिर्फ पल ने अटेम्प्ट किया है और सही पहचाना है। तो आपको भी अगर जो इस पोर्ट का नाम पता है तो 5599 पर भेजे और थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे ये गेम ओरिजिनेट हुई थी। तो एक गाना और सुनवाते हैं, अभी आपके पास में समय है। अगर जो आपको पता है एक गेम जहां पर 6 पॉकेट्स होते हैं, स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, चोक को भी यूज़ किया जाता है और जो नंबर बोल्स होते हैं उनको पॉकेट में स्कोर किया जाता है। Send me the name of the game on 5599.

हम पर जिस स्पोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे वो थी बिलियर्ड या फिर पूल टेबल भी आप पूल गेम भी बोलते हैं, पूल टेबल भी बोलते हैं। जवाब दिया है पल ने साथ में 5588 और संजीव आपने भी मैसेज किया, थैंक यू सो मच, आप सुन रहे हैं हमें। इसके साथ में एक और एक मैसेज आया है मेरे ख्याल से शेन की तरफ से। शेन थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और जो एलियस्ट ओरिजिन्स इस गेम के बारे में बताते हैं कि इट्स 15th सेंचुरी नॉर्दर्न यूरोप में इस गेम को यूँ कहें डिस्कवर किया गया था। एंड इनफैक्ट इसको ये बताया जा रहा है कि जो लोन बॉलिंग है कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन इस गेम से मिली थी। और हिस्टोरियंस का कहना है कि शायद ख़राब मौसम के कारण फिर इन जो लोन गेम है, लोन बॉलिंग है, इसको कन्वर्ट किया गया ताकि पूल टेबल इंडोर्स खेला जा सके, बिलियर्ड्स इंडोर्स खेला जा सके। तो इसी कारण से शायद कहीं ना कहीं लोन बॉलिंग से फिर घुमा फिरा कर बिलियर्ड्स को तैयार किया गया, इस खेल को तैयार किया गया। और फिर ये भी बताया गया है कि किंग लुइस जो फ्रांस के थे, ही वॉज फर्स्ट नोन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, जिन्होंने पहला इंडोर बिलियर्ड टेबल कमीशन किया था बनाने के लिए। उनको कुछ बैक इंजरी थी, इसी कारण उनको ये जो गेम काफ़ी पसंद था लोन बॉलिंग, और वेस्ट हाइट पर एक टेबल पर इन्होंने कमीशन किया इसको बनाने के लिए एक स्मॉलर वर्जन, ताकि ये इसको अच्छी तरीके से खेल सके। काफ़ी फ़ायदे हैं इस गेम के, लेजर स्पोर्ट है, साथ में अगर जो आप क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहते हैं तो ये भी इस गेम में एक रिक्वायरमेंट है। ये आपके क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करेगा, साथ में आपके फोकस को भी इम्प्रूव करेगा। मोर देन दैट, ये आपके हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि जब आप टारगेट शूटिंग करोगे तो यू कैन टेक एन एम विद योर आई, और फिर आपके हाथों से ये कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होगी। तो अगर जो आपने काफ़ी घरों में मैंने देखा है इंडोर्स ये रखते हैं, इट्स अ फेवरेट पास टाइम जब आप इस खेल को खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं रोवा पर आप हमको भी सुन सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं फुल फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और एक बात यह है कि जब आप इस खेल को खेलोगे समय कैसे बीतेगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा, यू विल लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम। तो ये जो खेल थी बिलियर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपके साथ में,

0: $5 cash. Ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
1: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
2: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
3: Non-stop Bollywood.
4: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
3: हम playing Bollywood's biggest hits.
5: हम पर मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं और आपको रिमाइंड कर दूं कि पहली तारीख अक्टूबर से कुछ रोड रूल्स हैं जिनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला मैं आपको ये बता दूं कि 1 अक्टूबर से अगर जो आप किसी रास्ते पर ट्रेवल कर रहे हो जहां पर स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पे आवा ओ अंडा, तो यहां पर जो बस स्टॉप्स है, अगर जो कोई बस पुल आउट कर रहा है इंडिकेट

करके तो आपको अलाउ करना पड़ेगा टू लेट द बस ऑन मूव ऑन द रोड, बस स्टॉप से बाहर निकल कर ये आगे आपके आना चाहे तो आपको ये अलाउ करना पड़ेगा। पहले कहीं ना कहीं एक KTC बेसिस पर थी, लेकिन अब ये एक रोड रूल हो जाएगा 1st of October से। अगर जो आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्रिंजमेंट नोटिस आपको मिल सकती है, तो आप इसको ध्यान में रखें। जबकि 1st of October से ये एक बदलाव है होने जा रहा है हमारे सड़कों पर।

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और ये कारवा हमारा चलता रहेगा जस्ट चिल का टिल सिक्स। अक्सर लोग आपसे ये पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग या फिर हाउ हैव यू बीन और आप जवाब में एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ही देते हो थैंक यू फॉर आस्किंग आई एम गुड थैंक यू। लेकिन जो आपकी एक्चुअल फीलिंग होती है ना ये आप हर किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक किसी खास की ज़रूरत होती है जिसके साथ में आप कॉन्फिडेंटली अपने प्रॉब्लम्स अपने बातें शेयर कर सकते हो और फिर उनके साथ में और भी डीपली बात कर सकते हो कनेक्ट कर सकते हो अपने इमोशंस को बांट सकते हो। तो इसके लिए हर किसी के लाइफ में किसी एक खास की ज़रूरत होती है तो रीच आउट करें और अपने फ्रेंड को भी कॉन्टेक्ट करें और बातें करें ताकि आप अकेले ना रहें। ट्रबल्स हो सकती हैं जबकि आप एक नए कंट्री में मूव होते हो परेशानी हो सकती है लेकिन दे आर पीपल आउट देयर जो आपके लिए मदद कर सकते हैं आपके लिए खड़े हो सकते हैं।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Big saves overstocked. Yes, massively overstocked with whiteware, and it all has to go. Need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? We've got huge whiteware deals like get an 8kg washing machine for just $4.90 or a 332-litre fridge only $9.99. Plus get a massive 36 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply, only at Big Save.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ, अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
7: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
8: कभी भी कहीं भी।
9: हम पर मैं अभी आपका साथ दे रहा हूं, और हमने शो में पहले भी कहा था कि बच्चों के लिए जो स्कूली हॉलीडेज में प्रोग्राम्स है इस पर आपको जानकारी देंगे। तो एक बार फिर आपसे बता देते हैं, अगर जो आप ईस्ट ओकलैंड में रहते हो तो पकुरंगा प्लाजा, यहां पर आप जा सकते हैं, जबकि स्कूल हॉलीडे फन पूरे पैमाने पर जारी रहेगा। पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाकर रखा गया है और द की वर्ड इज कि ये बिल्कुल फ्री है। फ्री स्कूल हॉलीडे फन फॉर किड्स वीक वन में जो कल से प्रोग्राम शुरू होगा, 1 PM से लेकर 3 PM तक डेली शो रहेगा। यहाँ पर फेस्ट डे यानी कि कल फ्लावर फेरी शो रहेगा। फ्लावर फेरी शो बच्चों के लिए ट्यूजडे को, क्लाउन शो एंड बलून्स 1 PM से लेकर 3 PM एट द सेम टाइम, और वेंसडे 30th September को साइंस शो रहेगा। थर्सडे 1st October को चीयर लीडिंग शो, साथ में फ्राइडे 2nd October 1 PM से लेकर 3 PM तक फेस पेंटिंग भी रहेगा। अगर जो आप वीक टू का भी प्रोग्राम जानना चाहते हैं तो पकुरंगा प्लाजा के वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर जो प्रोग्राम से लिस्टेड है और बिल्कुल फ्री स्कूल हॉलीडे फन है। बच्चे घर पर रहेंगे, बोर्ड हो जाएंगे, तो अगर जो कोई ले जा सकता है आप जा सकते हैं इनके साथ में 1 PM से लेकर 3 PM तक। फर्स्ट और सेकंड वीक में लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट्स ऑफ फन आपके बच्चों के लिए यहाँ पर पकुरंगा प्लाजा में रहेगा।

अंपर, दिस इज मी अवे कीपिंग यू कंपनी। और स्पोर्ट्स की दुनिया में एक चक्कर लगाते हैं, जबकि आज रात को नेशनल रग्बी लीग का प्रीलिम फाइनल रहेगा, जहां पर पैंथर्स और नाइट्स यह रात 7 पर एक दूसरे को टक्कर देंगी। तो ऐसे में अगर जो आप एक अच्छा मैच देखना चाहते हैं नेशनल रग्बी लीग का, तो पैंथर्स एंड नाइट्स आर प्लेइंग टू नाइट एट 7 PM, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं।

0: to Avineet.
1: हम पर इट्स मी अभी कीपिंग यू कंपनी जबकि एक नए आवा की शुरुआत हो गई है इस जस्ट आफ्टर 4 तो 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं इसी तरह से साथ देते रहिएगा जब तक जबकि 6 तक ये कारवा आपके साथ में जसशील का चलता रहेगा

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स में। मैं आपको बता दूं, रेल मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने कन्फर्म किया है कि जो इंटर आइलैंड फेरी सर्विसेज है अब ये पूरे कैपेसिटी में वापस काम करने लगी है। ये हुआ तब जबकि इनके फ्लीट में, इंटर आइलैंड फेरी के फ्लीट में एक शिप है जिसका नाम है कैताकी, और ये लार्जेस्ट पैसेंजर एंड व्हीकल फेरी शिप है इनके फ्लीट में। ये ड्राई डॉक सर्विसेज के बाद में वापस आ गई है और सेल करने लगी है। तो हालांकि जबकि ड्राई डॉक में कुछ डिलेज हुए थे सर्विसिंग में, लेकिन नाउ इट्स अप एंड रनिंग अगेन। कैताकी वापस आ गई है और इंटर आइलैंड फेरी सर्विसेज पूरे कैपेसिटी में अब काम करने लगी है।

0: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
1: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
2: हम पर मैं हूं अभी आपका साथी और ये सिलसिला है जसशील का 6 तक चलता रहेगा। मैं आपको याद दिला दूं इस साल बाद में यूं कहें कि 7 नवंबर को न्यूजीलैंड में इलेक्शंस होने को है और इसी मुद्दे पर बातें की हैं सैंडी और रुजबे ने नवतेज रंधावा के साथ में जो कि कैंपेन मैनेजर है नेशनल पार्टी के लिए फॉर मनीरेवा और ओटहू। तो नवतेज से पूछा गया है नेशनल के इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में और उन पॉलिसीज से क्या असर कम्युनिटीज पर पड़ता है। इसके साथ में जो हेल्थ केयर को लेकर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सामने आ रहे हैं उनके स्टाफिंग इश्यूज को लेकर ढेर सारे सवाल किए गए हैं। तो अगर जो आप भी अपना मन बनाना चाहते हैं या फिर अपने ओपिनियन आप मेकअप करना चाहते हैं तो दिस पॉडकास्ट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप इसको सुने विद एन इंडिपेंडेंट माइंड और लाइव लिखकर 5599 पर भेजे। याद रहे हमारा मोटिव यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन जहां जहां से जो जो पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही हैं लाकर आपको सुनाए और ताकि आप अपने मत से यानी कि अपने खुद के वोटिंग राइट को आप प्रैक्टिस करके आप जिसे वोट करना चाहे कर सकते हैं इस जनरल इलेक्शंस में। तो ड्राइव लिखे 5599 पर टेक्स्ट करें।

हम पर अब समय हुआ कि आपको बॉलीवुड की सैर कराए, जबकि पिछले दिनों मुश्ताक खान एक ऐसे एक्टर थे जो अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते थे। काफ़ी अच्छे अच्छे फिल्मों में इन्होंने काम किया है, अभिनय किया है, साथ में जैसे वेलकम जैसी फ्रेंचाइज में भी आपने इनको देखा था, जोड़ी नंबर वन जैसे फिल्मों में भी ये थे। तो जहाँ तक कॉमेडी फिल्मों की सवाल थी, यहाँ पर मुश्ताक खान को ज़रूर से ज़रूर फिल्मों में लिया जाता था। तो पिछले दिनों इनका इंतकाल हुआ बॉलीवुड में, और इनके जनाजे पर वेटरन एक्टर राजा मुराद ने कहा है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए कि जबकि इन्होंने मुश्ताक खान ने काफ़ी फिल्मों में हीरोज़ के साथ में काम किया था, लेकिन अपना फाइनल रिस्पेक्ट देने के लिए कोई भी बॉलीवुड का हीरो यहां पर पहुंचा नहीं। तो राजा मुराद ने कहा है कि इस डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मुश्ताक खान ने बड़े बड़े स्टार्स के साथ में काम किया था, और लेकिन इनके जाने के बाद कोई बॉलीवुड का लीडिंग हीरो इनके जनाजे पर नहीं पहुंचा। तो बॉलीवुड की जो दुनिया है, कहीं ना कहीं चेंजिंग इक्वेशंस होती ही रहती है और रिश्ते नाते बदलते ही रहते हैं।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर समय हुआ, मैं अभी आपके साथ में शेयर करूं कम्युनिटी न्यूज. जबकि महिंद्रा एनजेड दिवाली 2026 ये आ रहा है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं मेनेकाओ वेलोड्रोम पार्क पर, जिसका एक और एक नाम है मेनेकाओ स्पोर्ट्स बाउल. तो यहां पर आप दिवाली सेलिब्रेशंस में जाकर शामिल हो सकते हैं. जबकि मोहम्मद सदीक एंड टीम ये आ रही है लाइव फ्रॉम इंडिया, डीजे लकी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया. इसके साथ में डिलीशियस फूड स्टॉल्स भी रहेंगे, बच्चों के लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट और फन राइड्स, और On top of that, एक spectacular fireworks finale भी यहां पर रहेगा. तो mark the dates, Saturday 3rd of October, 1 PM से लेकर 9 PM. Entry बिल्कुल free है, आपको सिर्फ पहुंचना है मेनेकाओ वेलोड्रोम पार्क मेनेकाओ, जो ऑफ तेरी रांगी है. मेनेकाओ स्पोर्ट्स बाउल के नाम से भी ये जाना जाता है. तो 3rd of October को ये सेलिब्रेशंस धूम धड़ाका रहेगा यहां पर महिंद्रा एनजेड दिवाली 2026, जहां पर आपको भी आना है.

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

हम पर। मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं और बी हाइव से जो लेटेस्ट एक अनाउंसमेंट आया हुआ है यूथ मिनिस्टर की तरफ से, मैं आपको बता दूं, आप तक पहुंचा दूं कि 400 यूथ को अक्रॉस रोतरुआ सपोर्ट किया जाएगा ताकि ये एजुकेशन के साथ में कनेक्टेड रहे और साथ में अपने एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को भी ये डेवलप कर सके। ये अचीव किया जाएगा बाय टू न्यू फंडिंग पार्टनरशिप्स जहाँ पर कुछ 900,000 एलोकेट किए गए हैं बाय द यूथ मिनिस्टर। और उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में बताया है कि जो पार्टनरशिप है ये रहेगी डिजिटल नेटिव्स एकेडमी के साथ में, जो 2 सालों तक यूथ डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स डिलीवर करेंगी। इसके साथ में को फंडिंग आया है द स्पार्क फाउंडेशन की तरफ से ताकि ये कहीं ना कहीं अपने इस मोटिव को कामयाब कर सके। और जो एकेडमी का पहला पाथवे है 12 से लेकर 15 साल के बीच के यूथ के लिए है, टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी स्किल्स और इनके काबिलियत को बढ़ाए ताकि ये स्कूल एंगेजमेंट से बने रहें, यानी कि स्कूल में इनका फोकस या ध्यान बना रहे। तो ये सभी कुछ यूथ मिनिस्टर ने अभी एक हाल ही में अनाउंसमेंट में बताया जो मैं आप तक पहुंचा रहा था।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. सिर्फ रोवा पर.
1: Elite Bathroomwear Spring Sale is on now. Huge range of LED vanity mirrors. Complete range of kitchenware in any colour theme, including brushed bronze. There's handles, sinks, taps and Wastemaster accessories. Heated towel warmers in all sorts of styles, even floor mounted. All the brands, all the advice, all in one store. Elite Bathroomwear, your Kiwi-owned bathroom superstore. Come in, be amazed and touch it firsthand. Spring Sale on now for September only. Visit in-store or apply online for VIP access.
2: Drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
3: Bollywood's biggest hits.
4: Budge hit gaane.
5: Yo, main hu
6: sutta sa chhora.
7: You're listening to Avineet.
8: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी एंड इट्स जस्ट आफ्टर फाइव. समय इशारा कर रही है कि ये है फाइनल आवर ऑफ द शो. और आपको ये भी रिमाइंड कर दूं कि कल से जो स्कूली छुट्टियां हैं ये शुरू हो जाएंगी, जबकि बच्चे जो हैं घर पर रहेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि लेस ट्रैफिक ऑन द वे टू वर्क. और इसके साथ अगर जो आप अपने अलार्म लगाते थे जल्द जागने के लिए टू बीट द ट्रैफिक, तो शायद कहीं ना कहीं यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू स्नूज इन. थोड़ी देर के लिए तो सही, आप और देर से जाग सकते हैं क्योंकि रास्ते में आपको कल कम ट्रैफिक मिलेगी. और ऑन द अदर हैंड बच्चे घर पर रहेंगे तो आप काम पर भी रहेंगे लेकिन आपका जो मन है ये घर पर ही रहेगा, क्योंकि यू विल बी वंडरिंग कि व्हाट आर द किड्स अप टू. तो ऐसे में स्कूल हॉलीडेज कल से शुरू हो रही हैं. काफ़ी पेरेंट्स हैं जो इसको ध्यान में रखते हुए हॉलीडेज पर भी जाएंगे, तो बेस्ट ऑफ लक यही कहना चाहेंगे आपको. जितने भी बच्चे हैं इन्जॉय योर हॉलीडेज. इस आवा में भी आपके साथ में ढेर सारी बातें रहेंगी और ढेर सारे गाने भी हैं जो बारी बारी से आपके लिए प्ले करते रहेंगे. मैं हूँ अवि, आप सुन रहे हैं हमें 104.2 FM साथ में रोवा पर.

हाँ, पर मैं अभी आपका साथ दे रहा हूँ। कुछ मैंने पढ़ा है और मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर लूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तो याद रखिएगा, जो भी हो वो कल फिर आएगा। टूटा टूटा

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
4: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
5: क्या बनाते हैं इन kebab को special, Chef Alex?
4: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर kebab बनता है with love and passion.
5: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
4: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
5: 100% authentic and pure as mother's love.
6: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
7: A Kogan fan is just like a fan. Both fans do very similar fan things, but with slightly different little logos, shapes, and chords. One fan's a Kogan Smarter Home Heating and Cooling Bladeless Purifier fan. The other fan has a price you will not be a fan of. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
8: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
9: हम पर मैं अभी जितने भी हमारे राइट शेयर ड्राइवर्स हैं आपको याद करता हूं. खास उबर ड्राइवर्स के लिए ये सूचना है, अगर जो आपने अपने क्लेम नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज के साथ में लॉन्च कर दिया है तो ये विश्वास रखिए कि ये प्रोसेस हो रही है और एक क्लेम्स मैनेजर आपके साथ में कॉन्टेक्ट में रहेंगे बहुत ही जल्द. अगर जो आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इनटेक फो अब खुल चुका है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं. और ये नोट कर लीजिए कि जो नोट योर फॉल्ट सर्विसेज की जो फ़ोन टीम है ये करंटली फुली ऑक्यूपाइड है, बिजी है, फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है. तो आप इनको कॉल करके ना फॉलो अप करें, इंस्टेड आप ऑनलाइन nyfservices.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. याद रहे nyfservices.com पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.

आज आफ्टर सिक्स आपका साथ देने के लिए क्रिश रहेंगे, जबकि वो भी मेलोडियस नंबर्स लेकर आएंगे, कुछ अलग आपको सुनाने की वो कोशिश करेंगे, उनका भी साथ दीजिएगा। लेकिन अभी के लिए मैं 5 to 6 सेगमेंट के बीच में कहीं ना कहीं एक गज़ल डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी गज़ल लवर्स है आउट देयर जो सुनना पसंद करते हैं। तो आप इसे सुनिए, इंजॉय कीजिए, और उसके बाद में 6 के बाद में ऐसे ही कुछ नगमे आपको सुनने को मिलेंगे हम पर।

0: You're listening to Avineet.
1: हम्पर, दिस इज मी अवि, कीपिंग यू कंपनी. और थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा. ऐसे में आपको रिमाइंड करा दूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप हमारे हम फेसबुक पेज को फॉलो करें अगर जो अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि यहां पर अक्सर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हम ये अपलोड करते रहते हैं. और साथ साथ में रह रहकर जो प्रमोशंस होती हैं यहां पर रन किए जाते हैं, जहां पर आप इनमें पार्टिसिपेट करके और कुछ ना कुछ शानदार इनाम आप जीत सकेंगे. तो अभी तक अगर जो आपने हमारे हम फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो नाउ इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपने फ़ोन उठाए, थोड़ा सा तकलीफ दे अपने आप को और हमारे हम फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो करें.

हम पर आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। 12 से आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब समय हुआ कि एक बार फिर मिलने का वादा किए जाए, जबकि अगले वीकेंड पर हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी एक बार फिर। लेकिन अभी के लिए जो इवनिंग है अपना, रेस्ट ऑफ द इवनिंग आप इसे एंजॉय करिएगा और हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। जबकि कल से एक नए वीक की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में आपको बेस्ट विशेस दिए जा रहे हैं। दिस इज़ मी अवि साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। डू टेक केयर, बाय।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन. संडे नाइट मेलोडीज में मैं क्रिश आ गया हूँ आपके साथ देने के लिए प्यारे प्यारे गाने में लेकर आऊँगा और एक एक करके एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने में सुनाऊँगा आपको. संडे है आज, 27 सितंबर है, तो जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स आराम कर रहे हैं अभी, मैं यहाँ से आपको एक वंडरफुल म्यूजिकल जर्नी पर लेकर चलूँगा. एक ऐसा प्यारा संगीत भरा सफ़र जिसमें आपके लिए आपके फेवरेट सॉन्ग्स होंगे. कुछ मिक्स सॉन्ग्स लेकर आया हूँ आज अलग अलग तरह के, तो आप भी एंजॉय हमारे साथ कर सकते हैं. चलो कुछ गानों से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. स्वागत है आपका, क्रिश का बहुत सारा प्यार.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आज संडे है, 27 सितंबर है. अगर आपका स्पेशल डे है तो आपको भी बहुत ही जल्दी हम याद करेंगे. जितने भी लोग अभी आउट ऑफ ओकलैंड गए थे घूमने के लिए, आप वापस लौट रहे हैं, या फिर आप ओकलैंड आए थे घूमने के लिए और वापस आप लौट रहे हैं, यू आर गोइंग आउट ऑफ ओकलैंड, तो ट्रैफिक में फंसे होंगे शायद अराउंड दिस टाइम. थोड़ा बहुत हो सकता है ट्रैफिक, तो जहाँ कहीं भी आप है, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो स्वागत है आपका. और अगला गाना आपके नाम.

0: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। इट इज संडे आज और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से बीता होगा। नाउ इट्स इवनिंग और उम्मीद करता हूँ कि आगे का प्लान भी आपने बना के रखा होगा। आई एम श्योर इट्स मोस्टली अबाउट गेटिंग रिचार्ज्ड और हैविंग अ बिट ऑफ चिल टाइम और रिजुविनेट होना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर वीक टुमारो। मंडे टू फ्राइडे बहुत बिजी हो जाता है, तो संडे आपका और भी हसीन और रंगीन बनाने के लिए मैं क्रिश हूँ ना आपके साथ में, क्योंकि आपके लिए प्यारे गाने में लेकर आया हूँ कुछ और गाने आपके लिए।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स जो एक करके मैं लाया हूँ आपके लिए पेश करता रहूंगा। आज संडे है तो आप हमें ज़रूर बताएं 5599 पर टेक्स्ट कर कि आज आपने क्या किया, व्हाट मेड योर डे वेरी स्पेशल। और हमेशा हर एक दिन स्पेशल होना चाहिए और उसको स्पेशल बनाने वाले हम ही हैं, क्योंकि हमारे माइंडसेट और हमारे एक्शन पर डिपेंड होता है कि किस तरह का दिन हमारा बनता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो शायद उससे भी दिन डिसाइड होता है कि अच्छा या ख़राब जा रहा है। लेकिन अगर दिन अच्छा नहीं भी चल रहा है तो उसमें अच्छाइयाँ भी हम ढूंढ सकते हैं, जस्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: At Bunnings, lowest prices are just the beginning. And you can also earn Bunnings rewards in every aisle. Whether you're just popping in or stocking up for a project, a trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Simply download the Bunnings app and join Bunnings Rewards today. T's and C's and exclusions apply.
2: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
3: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
4: Drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
3: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में। बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM। देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड। डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन। रजिस्टर नाउ, विजिट bilcaps.com। प्रमोटेड बाय वेब टाइगर।
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: दिल से, दिल से, दिल तक.
7: आप सुन रहे हैं संडे नाइट मेलोडीज, जिसमें प्यारे प्यारे मेलोडीज गाने में लेकर आऊंगा आपके लिए, ऐसे गाने जो आप पसंद करते हैं. जैसे जैसे और भी रात आगे बढ़ती जाएगी, वैसे गाने भी और भी प्यारे होते जाएंगे आपके लिए. संडे नाइट ऐसा ही होता है, चिल करने का टाइम होता है और आरामदायक म्यूज़िक और सूदिंग सॉन्ग्स, वो भी आपके लिए हम लेकर आएंगे. अगले घंटे पर बहुत कुछ है, आपको बस हमारा साथ देते रहना है. क्रिश का साथ है, अगले घंटे पर मुलाकात होती है. बट फर्स्ट, ही इज़ अ कपल मोर सॉन्ग्स फॉर यू.

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
1: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
10: City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
11: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
12: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
13: See our first trip. Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
14: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
15: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
16: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back everyone. You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hit. Sunday Night Melodies aapke liye jaari hai aur main Krish aapke saath dunga. De raha hoon from 6 p.m. aur this is our second hour. Thank you so much aap के कंपनी के लिए और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिएगा क्योंकि मिडनाइट तक आपको हमारा साथ देना है. मंजिल अभी भी बहुत दूर है. मिडनाइट इज अ कपल ऑफ आवर्स अवे और हम चाहते हैं कि ये टाइम बहुत ही स्लोली जाए ताकि आपके लिए हम गाने पेश करें, आपके लिए हम म्यूज़िक पेश करें, इंफॉर्मेशन लेकर आए और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं जो होने जा रहा है, जो हो रहा है, इस पर भी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे. क्रिश का साथ है, सुनते रहो हम और भी प्यारे गाने आपके लिए. वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू दिस आवर जिसमें और भी प्यारे गाने लेकर आने का

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. हमारे जितने भी प्यारे listeners online हमारा साथ दे रहे हैं, आप रोवा के जरिए जुड़ जाते हैं. इनफैक्ट रोवा के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें और बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा. हम म्यूज़िक प्लस स्टेशन पर बातें करूंगा और रोवा के जरिए जितने भी हमारे प्यारे listeners सुन रहे हैं, मैं उनको शाउट आउट भी दूंगा. बस आपको हमारा साथ देना है. रोवा अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और फुल बेनिफिट्स ऑफ रोवा इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा. आई एम श्योर अभी तक आपने सुना होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोवा से कितने फायदे आपके हो सकते हैं.

0: play craft to creating loom band jewellery, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.co.nz.
1: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिल कैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर Play

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और संडे नाइट मेलोडीज जारी है। 27 सितंबर आज है। जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ देने के लिए जुड़ चुके हैं अभी भी, अगर आपने रेडियो ट्यून इन किया है, स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Romantic गानों की अगर बात करें तो आपका favorite song क्या है या कौन सा ऐसा गाना है जो आप बार बार सुनना पसंद करते हैं? It doesn't have to be new or old, जो भी है जो आपके जहन में, हमारे पास आप 5599 पर टेक्स्ट कर बता सकते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ संडे नाइट मेलोडीज को और भी आगे बढ़ाते हुए. प्यारे गाने आपके नाम करते हैं, आप इंजॉय कीजिएगा और हमें बताएं कि आपको ये गाने कैसे लगे.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: Ma, it's
1: too
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
5: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
7: City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
8: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
9: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
10: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
11: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
12: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
13: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है. हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
14: मिसेस सिंह.
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
1: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
16: Non-stop Bollywood.
17: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
16: हम playing Bollywood's biggest hits.
18: दिल से,
16: दिल से, दिल तक.
19: Bollywood's biggest hits आपके लिए सिर्फ होता है हम पर, जो लेकर आते हैं Bollywood's biggest hits, यानी हिट और हॉट गाने all the way from Bollywood. जो भी है Bollywood से जुड़ा वो आपके लिए हम लेकर आते हैं. Bollywood news भी आपके लिए होता है इस प्रोग्राम में, अगर समय रहा तो Bollywood news भी आपके लिए लेकर आएंगे. But the aim is to speak less, play more music, ताकि आप अपना संडे को और भी आरामदायक बना सकते हैं हमारे साथ होकर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम एवरी वन. कुछ और प्यारे गाने आपके लिए.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. सुनते रहो क्योंकि आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम लेकर आएंगे. कुछ गानों की रिक्वेस्ट भी आ रही है, वो भी हम बारी बारी से पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे. ऐसे काफ़ी लोगों ने गणेश चतुर्थी पूजा तो सेलिब्रेट कर लिया और भी अन्य फेस्टिविटीज़ की ओर अभी हमारी नज़र है, इंतज़ार है. इनफैक्ट नवरात्रि और साथ में दिवाली और फिर उधर क्रिसमस न्यू ईयर की तैयारियों में भी लोग बिजी हो जाएंगे और साथ ही में लोग अपना ट्रैवल प्लान्स भी बनाने लगे होंगे क्योंकि एंड ऑफ द ईयर या टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर काफ़ी ट्रैवल प्लानिंग होता है बाहर निकलने के लिए. आप भी सोच रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका इस बार कौन सा डेस्टिनेशन दिमाग में आ रहा है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए. संडे नाइट मेलोडीज जारी है.

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। तेजी से बहुत तेजी से समय भागता जा रहा है और आपके लिए गाने मैं जितना हो सके उतना पेश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और कुछ बॉलीवुड न्यूज़ भी जहां हमें मिलता है जहां हमारे पास है वो भी आपके लिए हम शामिल करते रहेंगे। एक शेर याद आया है जो आपके लिए हम पेश करना चाहेंगे आज। हमने ख्वाबों को हकीकत समझ लिया, हमने ख्वाबों को हकीकत समझ लिया, एक मुस्कुराहट को मोहब्बत समझ लिया। वो तो बस पल भर के लिए ठहरे थे, वो तो बस पल भर के लिए ही ठहरे थे, और हमने उसे अपनी पूरी दुनिया समझ लिया। ऐसे होता है ना, कभी कभी कोई दिल पर दस्तक देता है, हम उनको दुनिया मान लेते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए कोई रहता है। तब दर्द होता है अगर कोई हमें छोड़ कर जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई आपको छोड़ कर जाए आप अपने लिए ही काफी होते हो। कुछ और बातें करेंगे सेल्फ लव पर अगर समय मिलता है तो।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: डिब्बा खुल गया
2: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
3: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
2: डिब्बा खुल गया।
3: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: दिस इज योर बिजनेस। This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम पेश करते रहेंगे। संडे नाइट मेलोडीज आपके लिए जारी है, मेलोडियस गानों का दौर है और अच्छा लगता है। एवरीवन आई एम श्योर एंजॉयज रोमांटिक सॉन्ग्स। आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो भी एंजॉय करते हैं क्योंकि बात ही कुछ अलग होती है सूदिंग और सेंशुअस गानों में। अरिजीत सिंह ने कुछ अलग ही दौर पैदा कर दिया है या लाया है और आई एम श्योर एवरीबडी लव्स हिज म्यूज़िक। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है. प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे, सुनते रहो हम. और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स अभी फिलहाल रोवर के जरिए हमें सुन रहे हैं, आपको भी शामिल करेंगे. बहुत ही जल्दी रोवर पर मैं आपको जानकारी दूंगा, इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. एक और शेयर हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. आज फिर दिल ने एक दुआ मांगी है, आज फिर दिल ने एक दुआ मांगी है, तेरी खुशी में अपनी खुशी मांगी है. तू रहे जहाँ भी मुस्कुराता रहे, तू रहे जहाँ भी मुस्कुराता रहे, बस इतनी सी मोहब्बत हमने मांगी है. सुनते रहो हम, आपके लिए जारी है संडे नाइट मेलोडीज. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Sunday Night Melodies में एक बार फिर आपका स्वागत है everyone. Thank you so much for your great company. 6 to 9 p.m. बहुत ही मज़ेदार ये सफ़र रहा है and another 3 hours to go. Mid of the show हम पहुँच चुके हैं. स्वागत है on this hour as well. A very good evening to everyone listening or tuning in online या फिर आप अपने कार में हैं या फिर घर पर हैं रेडियो के जरिए आप हमें सुन रहे हैं तो स्वागत है आपका. इस घंटे पर भी लवली सॉन्ग्स में लेकर आया हूँ जो आप बहुत इन्जॉय करेंगे. इस घंटे पर इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे. रोवा पर जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ आप फ़ायदे में रह सकते हैं विद रोवा. इस पर जानकारी हम पॉडकास्ट पर भी बातें होंगी. साथ ही में बाली और बैंकॉक गेटअवे पर भी बातें हम करेंगे और इसके अलावा फीजी कीर्तन रिकॉर्डिंग तो एक्चुअली हो गया है आपके लिए लेकिन बाली और बैंकॉक गेटअवे पर बातें करेंगे. हम पॉडकास्ट पर भी बातें होंगी. इलेक्शन ईयर जब की है तो ऐसे में इलेक्शन स्पेशल इलेक्शन सेगमेंट आपके लिए ड्राइव टाइम शो में होता है थर्सडेज 5 to 6 p.m. इस पर भी बातें करेंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम टू द शो.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You are listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ Unfiltered Drive. सुनना ना भूले पॉडकास्ट की अगर बातें करें तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातें होती है. ये इलेक्शन ईयर है तो ड्राइव शो में स्पेशल इलेक्शन सेगमेंट आता है एवरी थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 6 PM, जिसके जरिए आपको तैयार किया जा रहा है और आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए ये सेगमेंट लाया जाता है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड पोजिशंस ऑफ द पार्टी शेपिंग न्यूजीलैंड्स फ्यूचर. तो फर्स्ट एपिसोड में एक्ट पार्टी लीडर डेविड सीमोर रिज़बी और सैंडी के साथ एक ओपन कन्वर्सेशन का हिस्सा बनेंगे अबाउट एक्स पॉलिसीज एंड हिज विजन फॉर न्यूजीलैंड. और ट्रीटी ऑफ वाइटांगी और कमेंट्स मेड बाय परमजीत परमार, इमिग्रेशन के मुद्दों पर बातें होंगी, एक्स प्रपोजल टू फ्रीज द अडल्ट मिनिमम वेज और अदर इश्यूज शेपिंग द कंट्री, इन मुद्दों पर बातें होंगी आपके लिए. तो फिर अनफिल्टर्ड ड्राइव सुनना ना भूले. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी पॉडकास्ट के बारे में बातें करेंगे, खासतौर पर ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
4: राज रोमांस एक्शन और सुपरनैचुरल पावर से भरी कहानी एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एम तमन्ना
5: इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले
4: द वन नाउ शोइंग इन सिनेमास
6: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी
7: हमें माता का बुलावा आया है
8: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
9: Drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है और Bollywood के ताज़ा तरीन खबरें आप तक हम लेकर आते हैं, साथ ही में Bollywood music भी आपके लिए होता है, only on हम playing Bollywood's biggest hits, कुछ और गाने मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, जगजीत सिंह की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा ये गाना कोई फरियाद वो होगा, उससे पहले जाने इस दिल का हदीका कियानी ने गाया है और फिर जगजीत सिंह का एक और जो गज़ल है वो भी आपके लिए पेश करेंगे, होश वालों को खबर ब्यूटीफुल सॉन्ग, पंकज उदास की आवाज़ में एक और गज़ल है चांदनी जैसा रंग, प्यारे प्यारे गाने तो है और ये जो गज़ल माइस्ट्रो है इनके आवाज़ में भी कुछ गज़लें आपके लिए, अभी मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Budget hit the gandhi.
2: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
3: You're listening to number one, Hum, playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai Rova. Agar aapne abhi tak download nahi kiya hai, to zarur kijiyega. Rova ko use karne mein bahut fayde hain. Aapko pata hai, bahut sare competitions bhi Rova ke zariye hote hain. Hamare music plus stations bhi aap Rova par sun payenge. Hum rewind ho, hum 80s jukebox ho, Fiji bhajans ho ya Chardi Kala Punjabi hits ho, Fiji kirtan sangra ho ya phir Rahat Fateh Ali Khan ke Sufi aur Qawwali songs ka ek bahut hi pyara list ho. तो ये सभी कुछ आपको रोवा पर ही मिलेंगे. तो रोवा पर पॉडकास्ट का भी एक्सेस आपको मिल सकता है. तो इस तरह से आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं. कॉम्पिटिशन्स और प्राइजेज जीतने के लिए भी रोवा बहुत ही फ़ायदेमंद है. तो आज ही डाउनलोड करें आपके फ़ायदे के लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम. नाइट कैफे जारी है एंड इट विल बी फॉर यू अंटिल मिडनाइट. मैं क्रिश आपके साथ देता रहूँगा.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में 3.9

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Hello everyone, welcome to the show. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और it's 10 PM और जितने भी हमारे प्यारे listeners हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं online के जरिए time difference अगर जो होता है विदेशों में इसके जरिए आप अगर आपने अभी radio tune in किया है तो स्वागत है आपका. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ midnight तक रहेगा. Another 2 hours to go. इस घंटे पर भी आपकी favorite songs हम पेश करते रहेंगे. Romantic गाने तो काफ़ी है जो एक एक करके मैं लेकर आया हूँ आपके लिए. रात ढलती है तो यादें जगती है. रात ढलती है तो यादें जगती है. खामोश गलियों में कुछ बातें बसती है. दिन तो गुज़र जाता है किसी तरह. दिन तो गुज़र जाता है किसी तरह. मगर रातों में अक्सर आँखें सच कहती है. स्वागत है आपका. संडे नाइट मेलोडीज़ जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.
2: रुकमणि रुकमणि शादी के बाद क्या क्या हुआ. कौन हारा कौन जीता.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे में आपका स्वागत है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और ऐसे ही आपका साथ देता रहूँगा ऑल द वे टिल मिडनाइट. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. पॉडकास्ट की बातें करें तो ब्रेकफास्ट केचअप सुनना ना भूले. विजय और पूजा के साथ ये होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातें होगी. बियॉन्ड द डेट, व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन. विजय और पूजा डाइव इन टू हाउ सोसाइटी मेजर सक्सेस फ्रॉम होम लोन्स टू मैरिज और क्यू लिसनर्स रीडिफाइन कर रहे हैं व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू बी सेटल्ड. बीएफ टेक्स करें 5599 पर. फुल ऑडियो आपको यहां पर मिलेगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं. स्वागत है आपका. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

You are listening to number one humping Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ इंटरेस्टिंग खबरें. वैसे रोवा पर भी आप हम म्यूजिक स्टेशंस का मजा ले पाएंगे. हम रिवाइंड में आपको मिलेगा बॉलीवुड्स गोल्डन ईरा 60s और 70s के हिट्स. 80s जुकबॉक्स में आपको मिलेंगे 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स. और फीजी भजन में आप वर्ल्ड्स फर्स्ट 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे, जिसमें भजन फ्रॉम फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फ्यूजी कीर्तन संग्रह बिगर चॉइस ऑफ

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. एक एक करके प्यारे गाने आपके लिए हम पेश कर रहे हैं. वेद प्रचार वीक ये होने जा रहा है फ्रॉम 28 सितंबर टू 4 अक्टूबर एट 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोए फ्रॉम 6:20 PM. और हाईलाइट ऑफ दिस ईयर्स प्रोग्राम रहेगा 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड. तो वेद प्रचार वीक में शामिल होना ना भूलें. तारीख याद रहे 28 सितंबर टू 4 अक्टूबर और जगह 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापाटोए फ्रॉम 6:20 PM. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
6: हाँ. अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं.
6: मिसेस सिंह.
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अगर आज आपका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन जिनका आज जन्मदिन है एंड दोज हु आर सेलिब्रेटिंग. आई एम श्योर आज बहुत कुछ घर पर किया गया है या फिर वीकेंड के लिए भी आपने प्लानिंग बनाकर रखा है, तो फिर टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश एवरीवन अ हैप्पी बर्थडे जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं. अगर आप आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड हो या फिर आउटसाइड ऑफ ओकलैंड हो, आप हमें रोवर के जरिए सुन रहे हैं तो अ बिग शाउट आउट टू ऑल आवर रोवर लिसनर्स, क्योंकि आपको हम हमेशा याद करते हैं. आप हमसे दूर होकर भी हमें अपने बहुत ही करीब रखते हैं थ्रू रोवर. तो आपके लिए अगला गाना सुनते रहो हम. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywoods.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe आपके लिए जारी है. Breakfast Catch-up, ये podcast भी सुनना ना भूले. Topic है Beyond the Debt. What does success actually mean? Vijay और Pooja बातें करेंगे about how society measures success, from home loans to marriage, और क्यों listeners are redefining what is truly what it truly means to be settled. तो BF text करें 5599 पर, full audio आपको यहाँ पर मिल जाएगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम और भी प्यारे गाने आपके लिए.

You're listening to number one, Humpling Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Two countries, one epic adventure, zero stress. Bali aur Bangkok getaway par baatein ho rahi hai. 50% bik chuka hai, 50% reh gaya hai. To aap jaldi se aap bhi apna spot ko allocate kar le, book kar le. From Tuk Tuk Thrills to Beach Club Chills, kyun ek dream destination ko aap choose kare, jabki aap dono choose kar paayenge. Bali aur Bangkok getaway, aur wo bhi Sandy aur Rizbik ke saath hoga, March 2027 Easter getaway mein. It's all planned. It's all inclusive. It's hassle free. आपको बस अपना बैग्स को पैक करना है और रेडी हो जाना है फॉर एन एपिक एडवेंचर. अगर क्वेश्चन हो तो फिर चाय पे चर्चा विद सैंडी और रिज़बे को ज्वाइन करें एंड आस्क एनीथिंग अबाउट द ट्रिप, फ्लाइट्स, होटल्स, आइटनरी, कॉस्ट्स और व्हाट टू एक्सपेक्ट और भी बहुत कुछ. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर टू फिल इन द फॉर्म टू ज्वाइन रिज़बे और सैंडी फॉर चाय पे चर्चा और आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया जाएगा. 50% ऑफ द स्पॉट्स आर ऑलरेडी गॉन, तो स्पेसेस अभी बहुत लिमिटेड हो गया है. सन टूअर्स को कॉल करें 0800 4 Sun Tours, yani 0800 4 786 868 to secure your spot before it's gone. Main Krish aapke saath de raha hoon.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: संडे नाइट मेलोडीज में बस आज के लिए इतना ही. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. हमारी मुलाकात होती है अब कल रात को 8 बजे नाइट कैफे में, लेकर आ जाऊंगा. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट एंड हैव अ गुड मंडे. क्रिश का बहुत ज़्यादा प्यार. नमस्ते, गुड नाइट.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है। आधी नींद में हूँ मैं।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 0211659362. That's 0211659362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
10: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. हर eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
11: राज, रोमांस, एक्शन और सुपरनेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एम तमन्ना।
12: इस वन की काली शक्तियाँ रात के साये से भी काले।
11: द वन नाउ शोइंग इन सिनेमास।
13: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास।
11: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
14: हमें माता का बुलावा आया है।
15: Playing Bollywood's biggest hits.
16: Budget hit the gun name.
15: Night Fly.

flight.

फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई ले

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर।
1: हे नेहा, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लो

0: या रॉक एंड रोल? Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
2: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
4: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
5: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: चाहे बोतल वोदका मेरा रोस्टर मैं मुझको करूं

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: कॉफी, the usual?
2: How about the unusual?
3: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
4: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Poke Kohe, where dreams begin.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
7: Big saves, overstocked. Yes, massively overstocked with whiteware, and it all has to go. Need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? We've got huge whiteware deals like get an 8kg washing machine for just $4.90 or a 332-litre fridge only $9.99. Plus get a massive 36 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply only at Big Save.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: The breakfast show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau. Global headlines.
11: सुबह के मुख्य समाचारों में आज सुबह के मुख्य समाचारों में सबसे पहले अगर देखें तो यूके पुलिस ने यूएस लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स वाले एयरबेस के पास से 5 पुरुषों को टेरा और एक्सप्लोसिव ऑफेंसेस के शक में गिरफ्तार किया है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आर्मी बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स को मौके पर तैनात किया गया और आसपास के कई घर खाली करवा लिए गए हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्शन को फैंटेस्टिक बताते हुए कहा कि दोनों देश इन सस्पेक्ट्स पर काफी वक्त से नजर रखे हुए थे। भारत में कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में राइट विंग ग्रुप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रोग्राम्स के दौरान स्टूडेंट्स और मेंबर्स के बीच हिंसक झड़प हुई। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि आरएसएस बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हाईली प्रोवोकेटिव रिमार्क्स किए, जबकि दूसरी तरफ ग्रुप ने पोस्टर तोड़े जाने और मारपीट का क्लेम किया। फिजी में नांदी संगम कॉलेज में होने वाला टीआईएसआई संगम इलेक्शन अचानक कैंसल होने के बाद अब एक इंटरिम कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज संभालेगी। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स प्रवीण बाला और दोमिन गाउंडर इस इंटरिम कमेटी के को चेयर्स होंगे, जबकि तीसरे कैंडिडेट डोरसामी नायडू को भी इसमें शामिल किया जाएगा। एजीएम के दौरान मेंबर्स ने इलेक्शंस करवाने के लिए हंगामा भी किया, पर बाला ने कहा कि बड़े गैदरिंग्स में हीटेड आर्गुमेंट्स आम बात है और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। विराट कोहली ने एक नया इतिहास जो है ये कायम किया है। भारत में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले ओडीआई में हाफ सेंचुरी लगाकर वो ओडीआई क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सबसे तेज और कुल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने ये शानदार फीट सिर्फ 303 इनिंग्स में हासिल किया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 15,000 रन तक पहुंचने के लिए 377 इनिंग्स लिए थे। इंडिया की जीत कल हुए मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 विकेट से हुई। वेस्ट इंडीज ने अपने इनिंग्स में 7 खिलाड़ी खोकर 295 रन बनाए। जवाब में इंडिया ने 41.4 ओवर्स में 2 खिलाड़ी खोकर 300 रन बनाए। दोनों देशों के बीच अब अगला मैच जो है ये बुधवार को खेला जाएगा। फिलहाल आज रात या आज शाम 5:30 बजे एशियन कप या एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में इंडियन क्रिकेट टीम का मुकाबला अफगानिस्तान से होने को है। वेलबीज टीम ने अंतिम 10 मिनट में 4 येलो कार्ड मिलने के बावजूद साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल रग्बी यूनियन मैच जीत लिया है। वेलबीज की जीत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 42-38 से हुई। यूएफए नेशंस लीग के कई मैचेस आज एक बार फिर खेले जा रहे हैं। अभी दूसरे हिस्से में सेबिया और नेदरलैंड्स 1-1 गोल से बराबर हैं, जबकि डेनमार्क की जीत वेल्स के खिलाफ 1-0 से हो रही है। आज सुबह 8:15 बजे से जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें जर्मनी ग्रीस का सामना करेगा, जबकि नॉर्वे की भिड़ंत पोर्चुगल के खिलाफ होगी। कई इंटरनेशनल फ्रेंडलीज जो हैं ये भी खेले जा रहे हैं। श्रीलंका की जीत सेशल्स के खिलाफ 3-0 से हुई। माल्टा 1 लिचेस्टर 0। जॉर्डन और सीरिया अभी प्रथम हिस्से में 0-0 से बराबर हैं। सुबह 9:30 बजे बोलीविया पेरेगुए से खेलेगा। इसके बाद आज रात 11:30 बजे जापान और वेनेजुएला के बीच भी एक फ्रेंडली इंटरनेशनल खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।

0: वाजिद और उनके साथियों को आप सुन रहे थे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, जिसके साथ अब 27 मिनट हो रहे हैं 6:00 बॉलीवुड में भी तमाम चीजें हो रही हैं जिनकी जानकारियां आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहते हैं। और आज सबसे पहले वो फिल्म जिसके बारे में अभी काफी बातें हो रही हैं, रामायण, इसका एक स्पेशल इवेंट जो है ये 2 दिन पहले हुआ था। इट वॉज नॉट अटेंडेड ओनली बाय फिल्म्स एक्टर्स एंड मेकर्स, लेकिन ग्लोबल यूट्यूब सेंसेशन मिस्टर बीस्ट, जिनके 517 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी इस इवेंट में गए थे। और लेकिन ये हाई प्रोफाइल इवेंट जो है, प्रमोशनल इवेंट, इस को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन जो है ये लोगों को हुआ, खासतौर पर जर्नलिस्ट को, मीडिया फ्रटर्निटी के लोग, कई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो है गुस्से में इस इवेंट से बाहर भी निकल गए। कन्फ्यूजन जो है इवेंट से पहले ही शुरू हो चुका था। इस इवेंट का इनवाइट जो है ये फ्राइडे को लास्ट वीक भेजा गया, एक दिन पहले मेंबर्स को। और उसके बाद व्हाट रेज्ड आईब्रोज वाज दैट रिवाइज्ड इनवाइट्स जो है विद इन 2 आवर्स जो है ये भेजे गए, ईच मेंशनिंग अ डिफरेंट टाइमिंग। पहला इनवाइट जो है उसमें ये कहा गया कि शुरुआत 12:30 बजे होगी, उसके बाद कहा गया 12 बजे शुरू होगा, और फिर द कॉल टाइम वॉज देन चेंज टू 1 PM। और रिवाइज्ड इनवाइट में जर्नलिस्ट को ये अश्योर किया गया दैट द इवेंट वुड बिगिन शार्प एट 1:30। इसी मुताबिक जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, पपराजी सभी फिल्म सिटी पहुंच गए, जो कि सिटी का जो सेंट्रल मीडिया हब है उससे काफ़ी दूर है, और समय पर पहुँच गए। एक जर्नलिस्ट जो वहाँ इवेंट अटेंड करने गए थे, उन्होंने बताया कि ये इवेंट जो है ये 1:30 बजे नहीं शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अज्यूम कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे इवेंट जो है ये शुरू हो जाएगा। और पब्लिसिटी टीम जो है कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रही थी कि क्यों इतना डिले जो है ये हो रहा है इस इवेंट को लेकर। और इट वॉज ओनली आफ्टर 3 PM जब लोगों को बताया गया कि मिस्टर बीस्ट का जो फ्लाइट था बेंगलुरु से, उसे डिले कर दिया गया, वो डिले हो गया है और उसी की वजह से ये होल्ड अप हुआ है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, क्वेश्चन रेज किया ऑन द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी टीम के मेंबर्स ने मीडिया को बताया कि दे वे फ्री टू लीव इफ दे डिड नॉट विश टू वेट। और इससे काफ़ी जर्नलिस्ट जो हैं ये काफ़ी नाराज हुए एंड दे वॉक्ड आउट ऑफ द इवेंट। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि जब रणबीर कपूर को बताया गया अबाउट जर्नलिस्ट लीविंग, तो उन्होंने एक कमेंट किया कि आप लोगों को जाना है तो चले जाओ। हाउएवर द जर्नलिस्ट जिन्होंने बॉलीवुड हंगामा से बातें की, उन्होंने स्ट्रेस किया कि रणबीर ने ये कॉमेंट एरोगेंटली नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि रणबीर डिंट मीन इट इन एन एरोगेंट मैनर व्हेन द जर्नलिस्ट अप्राइज्ड हिम ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने बताया कि अगर उनको लग रहा है कि उन्हें चले जाना चाहिए, दे कुड डू सो। रणबीर जो है वो खुद इस डिले से काफ़ी इरिटेटेड थे, क्योंकि वो तो मीडिया से पहले भी पहुंच चुके थे। साई पल्लवी भी सुबह से वहाँ पर मौजूद थी और वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही थी। जर्नलिस्ट ने यह भी दावा किया है कि द PR टीम वॉज केप्ट इन द डार्क बाई मिस्टर बीस्ट टीम, जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स थे। दे वर नॉट गिविंग प्रॉपर एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन कि वो कब तक वेन्यू पहुंचेंगे। इवेंचुअली जो इवेंट है ये 5:00 बजे शुरू हुआ, जो टाइम दिया गया था 1:30 का, उससे तकरीबन 3-4 घंटे बाद। और तब तक तो मीडिया वालों का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो चुका था, और काफ़ी हैवी अफेयर जो है ये वहाँ पर हुआ। इंसिडेंट कंक्लूडेड इन बेली 20 मिनट्स। कोई नया मेजर अनाउंसमेंट जो है ये नहीं किया गया, और रवि दुबे को छोड़कर नो वन फ्रॉम द टीम अपोलोजाइज फॉर मेकिंग द मीडिया वेट एंडलेसली। रणबीर कपूर, नमित मल्होत्रा, रवि दुबे, ये सभी वहाँ पर मौजूद थे, और मिस्टर बीस्ट जो है फाइनली आकर वहाँ पहुँचे थे। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था रामायण का ये स्पेशल प्रमोशनल इवेंट के दौरान।
1: Show with Vijay and Pooja.
2: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
3: हम
1: accurate traffic.
2: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
3: Mostly cloudy today, just a bit of sun, a high of 16 degrees. Coming into the city, northwest motorway, a little bit of traffic here and there, especially west of Massey. 20 minutes Massey to the city is fine though, it's pretty quick. Northern, 16 minutes Constellation to town, 32 from Silverdale, slow Constellation to Sunny Nook. Southern, 22 Manukau to the city, 40 from Drury, slow at Manurewa. Southwestern, fine both ways.
2: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
4: Professional Financials has saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
5: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
4: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
5: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
6: Okay, a large pizza base with tomato paste, a few salami slices, grated cheese, a 1.5 litre bottle of fizzy drink and a garlic bread on the side. Is that all?
7: Yes, that's all, thanks, but whoa, how much? On second thought, no thanks. I'm just going to make my own pepperoni pizza with stuff from Pack and Save.
6: Okay, sorry.
7: Apology accepted. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
6: Oh, man.
8: Uber drivers,

0: at this point.
1: And Sam really knows advertising.
2: Sam gets the brief. Sam's creating chances.
1: Sam scored a brilliant idea.
2: For radio, outdoor or digital, email Sam Walsh today.
1: Sam Walsh at mediaworks.co.nz.
3: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
4: Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye jari hai filhal. Abhi samay ki aur agar dekhein 25 minute reh gaye hain ab 7 bajne mein aaj 28th of September. Good morning ke aapke kuch messages aaye hain to un par bhi nazar kar lete hain. Sabse pehle Mr. Mata Mata, Ram Ram, Jai Mata Di, Happy Monday everyone, have a great day. Aapko bhi ye subah bahut bahut bar shubh aur mubarak ho. और बॉबी वान जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमें याद करने के लिए. गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम विजय पूजा एंड ऑल लिसनर्स ऑफ हम, हैव अ हैप्पी एंड लवली डे. रविनेश मुदलियार जी, आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. थैंक यू सुबह सुबह हमारा साथ जो है ये देने के लिए एंड फॉर ट्यूनिंग इन टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा 104.2 एफएम या फिर रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. आज 28th ऑफ सितंबर है और आज कई चीज़ें जो है ये सेलिब्रेट की जा रही हैं. आज फैमिली फन डे ये मार्क किया जा रहा है और सेल्फ अवेयरनेस डे ये भी आज मार्क किया जा रहा है. इसके अलावा इट्स आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन डे ये भी है आज. और इसके अलावा आज बर्थडे की ओर अगर देखें तो आज ही के दिन मौनी रॉय, इनका जन्म हुआ था 1985 में. एंड रणबीर कपूर आज ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इनके साथ आज के दिन द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था. और उनके इन बहुत ही जानी मानी हस्तियों के साथ अगर आज आप भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो ख्याल रखें कि समय से पहले अपने मैसेजेस जो हैं ये 5599 पर आप हमें भेज दें ताकि अगले घंटे हम आपको विश करने के लिए आप के घर आ सकें. एंड 5599 है हमारा नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस जो हैं ये आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं. अभी वक्त है आज का पहला जो सवाल है ये भी हम आपके लिए लेकर आए. और आज का हमारा जो बॉलीवुड क्विज है इसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ का नाम हम आपको बताएंगे और आपको अनुमान लगाना होगा कि फिल्म कौन सी है. तो शुरू शुरू में अभी तीन एक्टर्स जो हैं इनका नाम हम आपको बता रहे हैं. द फर्स्ट अप सलमान खान, सलमान खान. सेकेंड इज काजोल और थर्ड इज राखी गुलजार. सलमान खान, काजोल और राखी, ये तीन नाम जब आप सुनते हैं फिल्म कौन सी हो सकती है ये आपको हमें बताना है. अपना जो जवाब है ये आपको 5599 पर हमारे पास भेजना है. सबसे पहले आपको लिखना होगा BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम और उसे 5599 पर हमारे पास भेज दे. याद रहे आज के जो हमारे एक्टर्स हैं सलमान खान, काजोल और राखी गुलजार, ये तीन नाम जब आप सुनते हैं कौन सी फिल्म आपके जहन में आती है ये आपको हमें 5599 पर टेक्स्ट करके बताना है.
5: Let's go.
4: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: जुबिन नौटियाल को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जिसके साथ 17 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। और क्या कमाल, आज तो 3 ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है जो मूवी है उसे आइडेंटिफाई करने की। और सबसे पहले रोनल है, साथ में क्रुणाल है और हरमिलाप। आप तीनों ने ही कोशिश की है, सही है या गलत ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अटेम्प्ट तो आप कर ही सकते हैं अभी। और 3 एक्टर्स जिनके नाम हमने आज सुबह आपको बताए हैं, सलमान खान, काजोल और राखी, ये 3 एक्टर्स। फिल्म कौन सी हो सकती है ये आपको हमें बताना है। BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ।
3: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
5: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा।
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
3: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe, only on Hum. Accurate traffic.
9: Meanwhile, in warehouse country,
10: quite cloudy today, just a little sunshine, a high of 16. Got speed limits in place on the Harbour Bridge at the moment due to some stronger winds. If you're driving in, not too bad. Northern, 20 minutes in from Constellation Drive, slow at Silverdale, Constellation to Waito Valley and at Esmond. Northwestern, slow Greylinn to the city, just 22 minutes in from Massey. Southern, 25 Manukau to town, and slow patches Papakura to Papatoetoe and Penrose.
9: Detour to the warehouse for the country's best priced nature's fresh bread, eggs and milk.
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
12: मुझे भी।
11: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
13: If your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about, this is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
14: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
15: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
16: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
17: CRL first trip. Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
18: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
19: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
1: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: समय की ओर देखें तो फिलहाल अभी 13 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट भी आपकी खातिर इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। स्कूल हॉलीडेज जो हैं, जैसे हमने कहा कि ये शुरू हो चुकी हैं, और खबरों में भी तमाम चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं जिनके बारे में डिटेल्स वगैरह जो है ये हम आपको देते रहेंगे। इट्स सपोज टू बी स्प्रिंग, लेकिन साउथ आइलैंड में अभी काफ़ी ठंडी जो है ये पड़ रही है। एंड इसके अलावा अगर देखें एनपीसी के मैचेस ये भी ओवर द वीकेंड खेले गए. लोटो पावरबॉल $12 million हो गया. 5 लोटो प्लेयर्स जो हैं इन्होंने लोटो फर्स्ट डिवीजन जो है ये जीता है विनिंग $200,000 ईच. 7 प्लेयर्स जो हैं दे वन $39,215 लोटो का सेकंड डिवीजन जो है. और अब देखना है वेंसडे को क्या होता है. अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे. फिलहाल अभी आज का जो हमारा मूवी ऑफ द डे है आइडेंटिफाई करने की कोशिश. और 3 लोगों के बाद अभी तक किसी का अटेम्प्ट जो है ये भी सामने नहीं आया. जो पहले 3 एक्टर्स हमने आपको बताए हैं सलमान खान, काजोल, राखी गुलजार. सलमान खान और काजोल ने बहुत ज़्यादा फिल्मों में शायद एक साथ काम नहीं किया है, तो आप सोचें कौन सी ये फिल्म हो सकती है. उसके अलावा 2 और एक्टर्स हैं जिनका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं. अच्छी तरह से आप सुने, बड़े ध्यान से आप सुने. द नेक्स्ट एक्टर इज अमरीश पुरी. अमरीश पुरी और उसके अलावा द फाइनल नेम आज सुबह जो हम रिवील कर रहे हैं शाहरुख खान. अब तो ये बहुत ही आसान हो गया है. बस ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हमने फिल्म का नाम जो है ये ही आपको बता दिया है. तो आज के जो एक्टर्स हैं सलमान खान, काजोल, राखी गुलजार, अमरीश पुरी और शाहरुख खान, 5 ऐसे एक्टर्स का नाम हमने रिवील कर दिया है जिन्होंने की रोल्स जो है इस मूवी में प्ले किए थे. और उन्हीं की एक्टर्स के बदौलत बड़ी आसानी से फिल्म का नाम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब करना क्या है आपको, BF लिखें सबसे पहले, उसके बाद अपना आंसर लिखें और अपना नाम लिखें और 5599 पर हमारे पास उसे आप भेज दें. याद रहे BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम लिखें और उसे हमारे पास 5599 पर टेक्स्ट कर दें. देखिए कितने लोग आप में से सही सही अनुमान लगा सकते हैं. और उसके अलावा अभी अगर देखें शाइना आपने कहा है कुछ कुछ होता है. अब कुछ कुछ होता है आप सोचिए, उसमें सलमान खान थे और उसके अलावा काजोल भी थी, शाहरुख खान भी थे, क्या उसमें अमरीश पुरी थे, क्या उसमें राखी थी या नहीं. सो कोशिश करें जो 5 नाम हमने आज आपको बताए हैं, आखिरी बार ये नाम हम आपको बता रहे हैं, सलमान खान, काजोल, राखी, अमरीश पुरी और शाहरुख खान. फिल्म कौन सी है, BF आंसर और नाम 5599 पर आप हमें भेजें.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 11.5 डिग्रीज हो चुका है टेम्परेचर आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 11 डिग्रीज रहेगा, कुछ बादल छाए रहेंगे, कभी कभार हल्की बारिश हो सकती है। सनराइज तो हो चुका, सनसेट आज 7:23 PM पर होने को है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.

0: finance experience. Call 0800-634-234.
1: मेगा फाइनेंस की ओर से स्वागत है आपका टू मॉर्निंग मैडनेस ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मेगा फाइनेंस जो आपको फाइनेंस रिलेटेड सभी तरह की एडवाइस और असिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करते हैं आपके होम लोन सॉल्यूशंस, मॉर्गेज रिव्यू, रीफाइनेंस कंसल्टेशन सभी कुछ। परमेश या उनकी टीम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं। megafinance.co.nz जो है ये भी विजिट कर सकते हैं उनकी ओर से। हर सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक मॉर्निंग मैडनेस हम पर हम लेकर आते हैं। इस घंटे बहुत सारी चीज़ें होंगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे आज का आपका दिन जो है ये कैसा गुजरने वाला है। 7:30 न्यूज़ हेडलाइंस भी आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आएंगे और आज का सेलिब्रिटी अलार्म भी खेलेंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले घंटे जो सवाल हमने आपसे पूछा था, शाइना आपने अपना जवाब भेजा था, साथ में प्रीति हैं, नीतिका हैं, रिहान, फजीलत पापाटोय टोय से, दर्शना थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग आपके मैसेज के लिए, जोए हैं, विनय, साथ में जया फ्रॉम बॉटनी और आजलीन आपने भी अपना आंसर भेजा है 8897। अतीश आपने अपना आंसर भेजा है, अनिलेश शंकर साथ में क्रिस्टीन इनारा थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए और सल्लू गल्फ हबा फंग परुओ से अपना गुड मॉर्निंग मैसेज और आंसर ये भी आपने हमारे पास भेजा। तो आज जो क्लूज हमने आपको दिए थे या एक्टर्स जिन एक्टर्स का नाम हमने आपको बताया था उनमें शामिल थे सलमान खान, काजोल, राखी, अमरीश पुरी और साथ में शाहरुख खान। इन सभी सेलिब्रिटीज जो है इन्होंने काम किया था 1995 में आई थी फिल्म जिसको 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स से सम्मानित किया गया था और सलमान खान को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्टर के लिए और संजय वर्मा ने बेस्ट एडिटिंग का टेक्निकल अवार्ड जीता था। बेस्ट एक्शन का अवार्ड भीकू वर्मा जो है इन्होंने जीता था और राकेश रोशन को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट डायरेक्टर के लिए एंड राखी गुलजार को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। अशोक सरफ ये नॉमिनेट हुए थे बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए विद जॉनी लिवर और साथ में अमरीश पुरी को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल और बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन जो है ये भी इस फिल्म को मिला था। राजेश रोशन ने स्क्रीन अवार्ड जीता था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए और जो फिल्म थी इन 1995 वाज करण अर्जुन और एक दो ही गलत आंसर्स, बाकी सारे के सारे करेक्ट आंसर्स जो है ये आपने हमारे पास भेजे थे।

0: 4234. Rashi Vibes.
1: कैसा रहेगा आज का आपका दिन? सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपके लिए कहा गया है कि आज जहां तक हो सके झगड़ा झंझट से दूर रहें, किसी तरह की बहस में ना ही पड़े तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और आज छोटी छोटी चीजों को लेकर आप थोड़े ज्यादा टेंस्ड हो सकते हैं, और अपने एक्सपेंसेस पर अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना जो है ये आपको करना पड़ सकता है। और ये मेष यानी एरिस आपके लिए था। और उसके बाद वृष यानी टॉरस, आज आपके लिए कहा गया है कि अपने परिवार के किसी मेंबर के भविष्य को लेकर आज आपने जो मेहनत की थी पहले, उसका अच्छा नतीजा आपको मिल सकता है। कुछ नई चीज़ों में और रिसर्च वगैरह में आपका मन लगेगा और तरक्की के रास्ते पर आप और आगे बढ़ेंगे। ये वृष यानी टॉरस के लिए। मिथुन यानी जेमिनी, आज आपके लिए कहा गया है किसी इम्पोर्टेंट पहलू पर आज किसी के साथ चर्चा हो सकती है। इन्फ्लुएंशियल लोगों की मदद से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। और परिवार में आज पैसों को लेकर कुछ लोगों के साथ आज मतभेद हो सकता है। कर्क यानी कैंसर, आज आपके लिए कहा गया है कि जो यंग लोग हैं, आपको किसी अनुभवी यानी एक्सपीरियंस या जाने माने लोगों से गाइडेंस मिल सकता है। पड़ोसियों के साथ कुछ पर्सनल चीज़ों को लेकर कुछ खटपट हो सकती है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके एडवाइस को आज नज़रअंदाज ना करें। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की वजह से आज थकावट भी आपको हो सकती है। सिंह यानी लियो, आज आपके लिए कहा गया है किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की सलाह काफ़ी काम आ सकती है। आज इमोशनल होकर अपना काम ना करें या किसी तरह का डिसीजन जो है ये ना लें। बिजनेस में कोई नया एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं तो इनसे आपको फायदा हो सकता है। कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि किसी की मदद से कोई पुरानी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो सकती है। मेंटली आज आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। अपने बच्चों की संगति या उनके काम पर नज़र जो है ये बनाए रखें, ये काफ़ी ज़रूरी है आज आपके लिए। तुला यानी लिब्रा, आज आपके खातिर कहा गया है कि आज घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति यानी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। ट्रैफिक रूल्स जो हैं, नियम जो हैं, इनका पालन आप ज़रूर करें वरना प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। और बिजनेस अगर आप करते हैं तो एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस से और गाइडेंस से आज आपके बिजनेस को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तुला यानी लिब्रा के बाद वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, आज आपके लिए कहा गया है कि ऑर्गेनाइज्ड रूटीन और मेहनत के अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई अगर आप करते हैं तो आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। इनकम के साथ आपके खर्च जो हैं ये भी आज बढ़ेंगे। धनु यानी सेजिटेरियस, गैर ज़रूरी काम में समय बर्बाद ना करें। आप डिसाइड करें कि आपका टारगेट क्या है, क्या आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर ही फोकस करें। इमोशनल होकर आज किसी तरह का डिसीजन ना लें। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि अपने बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर ना आप डालें या किसी तरह का प्रेशर दबाव उन पर ना बनाएं। और मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज उलझनों से आपको राहत मिलेगी। मेंटली आप अच्छा फील करेंगे और हो सके तो साझेदारी में या हिस्से में जो काम करते हैं उस पर थोड़ा फोकस आज करें। ये मकर यानी कैप्रिकॉर्न आपके लिए था। कुंभ यानी एक्वेरियस, आज आपके लिए कहा गया है पिछले कुछ समय से चल रही प्रॉब्लम आज आपके लिए ख़त्म हो सकती है। और आज भाइयों के साथ या रिश्तेदारों के साथ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर बहस हो सकती है। समझदारी से मामला जो है ये निपट सकता है। बिजनेस में मन चाहे रिजल्ट्स आज आप हासिल कर सकते हैं। और फाइनली मीन यानी पैसेस, आज आपके लिए कहा गया है रुका हुआ पैसा मांगने पर कुछ हिस्सों में मिल सकता है। पूरा पूरा एक साथ नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शायद आपको मिले, जिससे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा बेहतर होगा। और छोटी सी भी गलती आज आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। अपने निजी और पारिवारिक मामलों को बहुत ही केयरफुली आप रिजोल्व करें या उनसे डील करें। So, ye the aaj ke aapke Rashi Vibes on hum playing Bollywood's biggest hits.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Chubo jao, papi ho, chubo jao.
0: With Sandy and Rusby. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi.

0: you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
1: आज सही गलत की तो बात ही दूर है, अभी तक किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है आज के हमारे सेलिब्रिटी को आइडेंटिफाई करने की।

0: finance experience. Call 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में वेस्ट ऑकलैंड के मेसी के रेड हिल्स पर दो गाड़ियों की आमने सामने हुई टक्कर में एक शख्स की जान चली गई। सेंट जॉन एम्बुलेंस ने मौके से चार लोगों को रेस्क्यू किया, जिनमें से एक को गंभीर हालत में ऑकलैंड सिटी हॉस्पिटल जबकि बाकी तीन को वाइताकरे अस्पताल ले जाना पड़ा। ऑकलैंड में नेशनल और लेबर पार्टी ने अपने अपने लॉयल सपोर्टर्स के बीच चुनाव प्रचार यानी इलेक्शन कैंपेन जो है इसको ऑफिशियली लॉन्च किया। नेशनल पार्टी ने टैक्स न बढ़ाने, कंपलसरी की भी सेवा और $1,500 बेबी बूस्ट जैसे वादों के साथ अपना 10-पॉइंट एजेंडा पेश किया। वहां लेबर पार्टी ने स्टूडेंट लोन पर 10% वेवा का बड़ा ऐलान किया और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। ग्रीन पार्टी ने टैक्स फ्री इनकम थ्रेशोल्ड और $10 million से ज्यादा वेल्थ पर 2.5% टैक्स लगाने का ऑप्शन पेश करके दोनों पार्टीज को अपने घेरे में लिया। ऑल व्हाइट्स सॉकर टीम की जीत एक फ्रेंडली इंटरनेशनल में कल चाइना के खिलाफ 3-0 से हुई। अन्य जो फ्रेंडली इंटरनेशनल्स खेले गए उनमें आज श्रीलंका की जीत सेशल्स के खिलाफ 3-0 से हुई। माल्टा ने रिचर्डसन को 2-0 से हराया। अभी दूसरे हिस्से में जॉर्डन और सीरिया 1-1 गोल से बराबर हैं। अभी सुबह 9:30 बोलिविया पेरेगुए से खेलेगा, जबकि आज रात 11:30 जापान और वेनेजुएला के बीच एक मैच खेला जाएगा। उधर यूएफए नेशंस लीग के मैचेस आज सुबह खेले गए। नेदरलैंड्स की जीत सर्बिया के खिलाफ 2-1 से हुई। डेनमार्क ने वेल्स को 2-0 से हराया। जर्मनी और ग्रीस, साथ में नॉर्वे और पोर्चुगल का मैच 7:45 AM पर खेला जाएगा। 11th सनातन वर्ल्ड कप के लिए जबरदस्त तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये टूर्नामेंट 2 दिनों बाद ऑकलैंड में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए कई टीमें जो हैं ये न्यूजीलैंड पहुंच रही हैं। फुटबॉल के प्रीमियर डिवीजन कंपटीशन में अगर देखें तो ग्रुप आई में हॉक्स बे सनातन, न्यूजीलैंड सनातन और साथ में हैमिल्टन सनातन, मेलबर्न सनातन और फीजी बरारा सांबे तो सनातन हैं। ग्रुप बी में न्यूजीलैंड लौटोका, न्यूजीलैंड ननरोंगा, न्यूजीलैंड बा और फीजी वायरम्बतिया है।

0: Israel and Breki Reki Sanatan, और साथ में Men in Black Mbah Sanatan, New Zealand Legend Sanatan और Vancouver Sanatan की टीमें हैं. कंपटीशन के अंतर्गत अगर देखें तो पहला मैच बुधवार की सुबह 10 बजे से Hawke's Bay Sanatan और New Zealand Sanatan के बीच खेला जाएगा और उसी समय पर Hamilton Sanatan Fiji Mbarara Sambeto Sanatan का सामना करेगा. इन मैचेस पर अपडेट्स और सनातन वर्ल्ड कप पर पूरी जानकारियां आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे. ये रहे सुबह के मुख्य समाचार.
1: सनातन वर्ल्ड कप अपडेट्स ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय NYF सर्विसेज. उबर ड्राइवर्स अप्लाई फॉर योर क्लेम्स ऑनलाइन एट nyfservices.com. बिल्ड कैप्स रियल एस्टेट इन्वेस्ट इन दुबई. बुक योर 1-to-1 कंसल्टेशन टुडे. विजिट buildcaps.com. एंड प्रोफेशनल वीजा सर्विसेज बेस्ड इन ऑकलैंड एंड हैमिल्टन ऑफरिंग मल्टीपल वीजा पाथवेज विद अ टीम ऑफ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स. Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Hum. Accurate traffic.
2: Kitchenmania.co.nz.
3: A few fine spells, quite cloudy today, high of 16. Coming in on the southern motorway, got a crash in the right lane after Takanini, quite heavy Papakura to Manurewa. Then slow patches around Mount Wellington, Ellerslie and Green Lane. Southwestern, bit heavy northbound through Whitty. Northwestern, 22 minutes Massey to town, slow from St. Luke's, but heavy at times. Northern 22 from Constellation, slow patches from there, and speed limits on the bridge.
2: Kitchen Mania, design, build and install your brand new Kiwi made kitchen.
4: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला. रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का. आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के.
5: Want to save $500 on your booking at Flight Centre? Bundle your international flights with travel insurance plus an international cruise or tour of 7 nights and save. Terms and conditions apply. Book in store now.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like a massive half price off Tegel products. Stock up on Tegel takeouts, burgers, tenders, nuggets and more. TCs and exclusions apply.
7: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari koi branch nahi hai.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
8: Birthday greetings.
10: Iska birthday bhai?
11: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
10: Happy birthday to you.
0: Many, many happy returns of the day. आज 28th of September, अपना special day आप celebrate कर रहे हैं. इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको हम देना चाहेंगे. आज विनेश चंद आज अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं. खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको दे रहे हैं. ईश्वर से आपके लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. और आज सुभाष है, साथ में आशा हैं, कोमल शिवदत्त जी हैं और जिसके अलावा प्रीतेश, इन्होंने भी आज आपको याद किया है और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं. हमारी ओर से भी ये खास दिन आपको शुभ और मुबारक हो.

0: 0800 634 234.
1: 20 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज इनाम जीतने के क्या कई लाजवाब मौके जो हैं ये भी ऑन द ब्रेकफास्ट शो हैं आपके लिए. लेकिन उससे पहले आज का हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म, क्या गति हुई. एक पर्सन है, एक ही शख्स है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है आज की हमारी सेलिब्रिटी को आइडेंटिफाई करने की. और आपका नाम है बलजिंदर. सो बलजिंदर, थैंक यू सो मच. कम से कम आपने अपना आंसर भेजा और वो भी मानिए आपने भी अटेम्प्ट जो है ये किया है. आखिरी बार हम आवाज़ आपको सुना रहे हैं और ये जो है इनकी आवाज़ जो हम आपको सुना रहे हैं अपने समय की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस जो है रह चुकी हैं. आई थिंक अभी एक फिल्म में ये आने वाली हैं, लेकिन क्या किरदार निभाएंगी, कौन सा रोल प्ले करेंगी, इसके बारे में कुछ खास डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं हैं. लेकिन इन्होंने कुछ बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स के साथ एज अ लीड एक्ट्रेस काम किया अपने टाइम पर. कौन हैं ये, अच्छी तरह से इनकी आवाज आप सुने. आप में से भी बहुत सारे लोगों को हो रही है कि पहचाने ये कौन हो सकती है. तो हमने कहा है कि अपने समय पर, अपने पीक पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फिल्मों में एज अ लीड एक्ट्रेस काम किया. अब आजकल तो शायद फिल्मों में उतनी नहीं दिखती है, लेकिन खबरों में अक्सर ये आती रहती हैं. और इन के बारे में इतना कहा जा सकता है कि ये शायद कुछ न कुछ करने वाली हैं या किसी एक फिल्म में आने वाले समय में ये नज़र आ सकती हैं. और ये फिल्म जो है ये इंटरेस्टिंगली संजय लीला भंसाली की एक फिल्म में नज़र आ सकती हैं. कौन सी ये एक्ट्रेस हो सकती हैं, इसका जवाब आपको हमें देना है. BF अपना आंसर और अपना नाम. रजनील, ये राखी सावंत की आवाज़ नहीं है. दिस इज़ नॉट राखी सावंत. इतना हम आपको क्लू दे चुके हैं. तो कोशिश करें, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप में से कितने लोग हैं जो सही सही अनुमान लगा पाते हैं कि ये आवाज़ किन की थी.
2: Let's go.
3: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: finance experience, call 0800-634-234.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: आज के अगले थ्रोबैक का वक्त अब हो चुका है, लेकिन उससे पहले आज की सेलिब्रिटी कौन है भाई? बहुत मुश्किल हो रही है, और मोविन आपने कहा है रेखा, तो ये रेखा की आवाज़ भी नहीं थी। 3300 आपने भी रेखा कहा है। देवेंद्र सिंह आपने कहा है ममता कुलकर्णी, ये आवाज़ ममता कुलकर्णी की भी नहीं है। और ऐसा करते हैं, आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, बट एक या दो सही जवाब आए हैं हमारे पास। आखिरी बार एकदम कंफर्म्ड फाइनल टाइम ये आवाज सुना रहे हैं हम आपको।
3: Why are you not married? I'm like, do I mean, why are you still single? I said, do I ask you why you're still married? Don't ask me why I'm still single. So simple as that. अभी मैंने शादी की तब प्रॉब्लम हुआ, जब भी मैंने शादी खत्म कर दी तब प्रॉब्लम हुआ, अब मैं सिंगल हूँ तब प्रॉब्लम है। तो ये 18 साल की है या ये 20 साल की है, ये क्यों करती है? प्रॉब्लम रहेगा।
2: तो अब आप कोशिश करें पता लगाने की या बताने की कि ये कौन सी एक्ट्रेस की आवाज़ है। 1989 में एज एन एक्ट्रेस इन्होंने डेब्यू किया था, और उस फिल्म में इन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड जो है ये भी मिला था। उसके बाद 1990 में इनकी कोई फिल्म नहीं आई। 1991 में इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, और लगातार आई थिंक आखिरी बार इन्हें देखा गया था चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, उस फिल्म में भी इन्होंने काम किया था। और ऐसी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया जिसमें इनका स्क्रीन नेम और इनका रियल नेम जो है ये एक ही था। इन्होंने तेलुगु तमिल फिल्मों में भी काम किया, और साथ में ये छोटे पर्दे पर भी नज़र आई हैं, जैसे कि बॉम्बे बेगम्स 2021 में, 2023 में बिग बॉस OTT 2, उसमें भी ये नज़र आई थी। आई थिंक फोर्थ रनर अप थी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। 2024 में बिग गर्ल्स डोंट क्राई, उसमें भी इन्होंने काम किया था। तो ये कुछ क्लूज हो गए आपके लिए, होपफुली दिस माइट हेल्प यू। कई फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी किया है एज अ प्रोड्यूसर। तमन्ना, दुश्मन, जख्म, सुर, जिस्म, पाप, रोग, हॉलीडे, धोखा, कजरारे, जिस्म 2, कैबरे जैसी फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। तो लेट्स सी इफ दिस हेल्प्स यू। BF आंसर और नाम ये 5599 पर हमें भेजें और बताएं कि आज की हमारी सेलिब्रिटी जो है ये कौन हो सकती हैं। कुछ क्लूज हमने आपको दिए हैं। 1989 में एज एन एक्ट्रेस इन्होंने डेब्यू किया, और बहुत सारी फिल्मों में इनका स्क्रीन नेम और रियल नेम जो है ये भी सेम था। 2022 में आई थिंक आखिरी बार ये नज़र आई थी एज एन एक्ट्रेस चुप, द रिवेंज ऑफ आर्टिस्ट में। टेलीविजन पर भी ये नज़र आई हैं 2021 में बॉम्बे बैगम्स, 2023 में बिग बॉस OTT 2, और 2024 में बिग गर्ल्स डोंट क्राई। ऐसी कई जो स्मॉल स्क्रीन प्रोग्राम्स हैं उसमें भी ये नज़र आई हैं। तो BF आंसर और नाम ये 5599 पर हमें भेजे। जब तक बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक से आप फिल्म गुनाह का ये गाना जो है ये एंजॉय कर रहे हैं। 2002 में ये फिल्म आई थी, और उसका ये गाना आज का हमारा अगला थ्रोबैक, जिसके बाद 8 बजे वाले न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आने वाले हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The temperatures are gone down a bit, 10.5 degrees. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 11 degrees. Kuch badal chhaye rahenge. Rere kar aaj halki barish ho sakti hai. Sunset 7:23 PM par aaj ka hone ko hai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: ट्रेंड पेट्रोल का वक्त हो चुका है. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फिलहाल ट्रेंड कर रही हैं, इनके बारे में भी कुछ बातें जो है ये होती हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो हर सुबह. एंड वन ऑफ द थिंग्स लाइव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चार्ट्स जो हैं ये अभी सोशल मीडिया पर दे हैविंग देयर मोमेंट. और क्या होता है कि इस दौरान जो टीम मेम्बर्स हैं दे एंगेज इन प्लेफुल एम्प्लॉई जनरेटेड कॉन्टेंट ट्विस्ट, और इस तरह से यू नो क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है. एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी समय पुरानी है से खेलते आए हैं लोग, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं. दैट्स रॉक पेपर सीजर्स का जो गेम है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस. यू नो ये कहावत है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये एक ट्रेंड अभी काफ़ी पॉपुलर हुआ है जहाँ पर मनी कान बाय हैप्पीनेस बट इट कैन बाय, और उस चीज़ की फ़ोटो या ऑडियो जो है ये आप डालते हैं, और ये लोगों के बीच अभी काफ़ी पॉपुलर. आई डोंट नो हाउ मच व्हाट एक्चुअली इससे फ़ायदा होता है, लेकिन ट्रेंड ये कर रहा है. गेस द नंबर, ये क्लासिक पार्टी ट्रिक है जहाँ पर टू पीपल जो है ये ट्राई करते हैं कि फिगर आउट द नंबर स्टक इन देयर फोरहेड बाय येस और नो क्वेश्चंस. एक सिंपल लॉ टेक गेसिंग गेम जो अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं. ऐसी और भी तमाम चीज़ें हैं जो ट्रेंड कर रही हैं जिनके बारे में डिटेल्स हम आपको देते रहते हैं. बाय द वे, आज सेलिब्रिटी अलार्म में आवाज़ जो हमने आपको सुनाई, आप में से कई लोगों ने अटेम्प्ट किया अपने आंसर्स जो है ये हमारे पास भेजने के लिए. सनी थैंक यू सो मच, और साथ में सोम आपने अपना जवाब भेजा है, रजनील सिंह हैं, लोकेश हैं, इसके अलावा देवेंद्र सिंह, विनी आपने अपना आंसर भेजा है, मोनी हैं, सृष्टि हैं, विनीता हैं पापाकुरा से, आपने भी अपना आंसर भेजा. थैंक यू सो मच. और आज की सेलिब्रिटी अलार्म में हमारी सेलिब्रिटी थी पूजा भट्ट.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. सिर्फ रोवा पर.
1: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom! Supercharge your business today with the help of Xero.
2: Search Xero with an X!
3: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
4: Elite Bathroomware Spring Sale is on now. Huge range of LED vanity mirrors. Complete range of kitchenware in any colour theme, including brushed bronze. There's handles, sinks, taps and Wastemaster accessories. Heated towel warmers in all sorts of styles, even floor mounted. All the brands, all the advice, all in one store. Elite Bathroomware, your Kiwi-owned bathroom superstore. Come in, be amazed and touch it firsthand. Spring Sale on now for September only. Visit in-store or apply online for VIP access.
5: Alright, Pepper, now we're going to do a radio ad.
6: Can't you just use my line from the TV ad?
5: Well, let's just do it again, please, Pepper.
6: Phone dollars are for phones. Obviously?
5: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
6: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
5: QTs and Cs.
6: Eligibility and Ts and Cs apply. For more info, visit 1NZ/1Wallet.
5: Cool, and the NBIT.
6: One New Zealand. Let's get connected.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
7: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton.
9: What's your take?
10: What's your take? वक्त अब हो चुका है on the breakfast show with Vijay and Pooja. अनेक पहलुओं पर अलग-अलग चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और अपनी-अपनी निजी जिंदगियों के बारे में भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम सोचते रहते हैं. तो एक person है who lives abroad, एक Indian है. उन्होंने social media पर एक video जो है ये share किया है. और आज उस एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है जो इंस्टा पर उन्होंने शेयर किया है, तो वो मैं पहले आपको सुनाता हूँ. हैव अ लिसन टू व्हाट शी एक्चुअली सेड एंड उसके बाद और बातें जो है ये हम करेंगे.
11: क्योंकि पैसा तो हम बाहर रहने वाले लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होती है, पैसा तो हम भर भर के कमाते हैं, बट क्या तुम्हें पता है हम सेक्रीफाइसेस क्या क्या करते हैं? जब हम 2-3 साल बाद घर जाते हैं तो पता चलता है ओ मम्मी पापा की उम्र थोड़ी और बड़ी हो गई. सारे फैमिली फंक्शंस हम वीडियो कॉल पे अटेंड करते हैं और बीमार हो ना ये क्या होता है? कुछ भी हो गया हो सारे काम अपने खुद ही करने पड़ते हैं, कोई चाय भी पूछने नहीं आता, दवाई भी खुद लेंगे, खाना भी खुद बनाएंगे और कभी कभी काम पर भी जाना पड़ता है. जब तुम फेस्टिवल्स इंजॉय करते हो तब हम काम पर होते हैं. तो जब हमारे डॉलर्स गिनते हो ना ये सारी सेक्रीफाइसेस भी गिना करो ना.
10: तो इन्होंने कहा है कि जब आप विदेश में रहने वाले लोगों के डॉलर्स गिनते हैं तो उनके सेक्रीफाइसेस भी गिना करो. तो हमने सोचा आज यही आपसे पूछते हैं कि क्या एक्चुअली में जो सेक्रीफाइसेस हैं उनके बारे में फैमिलीज बैक एट होम समझते हैं या गिनते हैं या नहीं गिनते हैं, जो भी आप जैसे भी आप कहना चाहें. तो ये आज का हमारा टॉपिक है और लाइन सम आपके लिए खोल रहे हैं 0800-004866 पर आप कॉल कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग एफास.
12: गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग?
10: हम ठीक हैं, आप कैसे हो?
12: मैं भी ठीक हूँ. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई वुड से कि घर वालों को ये चीजें पता होती है कि हम लोग काफी चीजें मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब वो हमें वीडियो कॉल करते हैं, हम जब यहाँ से सेलिब्रेट कर रहे होते तो उनको भी हमारी कमी होती है कि हम वहाँ नहीं है. तो मुझे लगता है कि दे नो, बट वही है कि वो बोल नहीं पाते. तो थोड़ा सा मुझे ये स्टेटमेंट एक्चुअली काइंड ऑफ यानी सही था कुछ हद तक आई वुड से, बट बोलने का तरीका सही नहीं था.
10: ओके, फेयर इनफ.
12: मुझे ऐसा लग, ऐसा साउंड किया मुझे वो. और हाँ, हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं और बट वो हमारी चॉइस है. हम एक बेटर लाइफ चाहते हैं, एक अलग लाइफ चाहते हैं, या कुछ अलग जैसे आप बोलते हैं ना, बाहर कंट्रीज में रहना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो हमारी चॉइस है. हमको किसी ने बोला नहीं है कि आप जाओ बाहर रहो, ये करो वो करो, है ना. तो वो भी पॉइंट आई थिंक कंसिडर होना चाहिए फैमिलीज के लिए. और बस बाकी तो देखो हर किसी के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं, बट मुझे लगता है कि फैमिलीज को ये चीजें पता होती है, तो वो उनको रियलाइज बोल के बताने की जरूरत नहीं है.
10: थैंक यू एफर्स, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए एंड शेयरिंग व्हाट यू फील. तो एक लेडी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर एक वीडियो जो है ये शेयर किया है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि लोग जो है बैक एट होम जब विदेश में रहने वाले अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स के डॉलर्स के बारे में आप सोचते हैं, डॉलर्स गिनते हैं, तो उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं वो भी गिना करो. तो हैव अ लिसन.
11: भर के कमाते हैं, बट क्या तुम्हें पता है हम सैक्रिफाइसेस क्या क्या करते हैं? जब हम 2-3 साल बाद घर जाते हैं तो पता चलता है, ओ मम्मी पापा की उम्र थोड़ी और बड़ी हो गई. सारे फैमिली फंक्शंस हम वीडियो कॉल पे अटेंड करते हैं. और बीमार हो ना, ये क्या होता है? कुछ भी हो गया हो, सारे काम अपने खुद ही करने पड़ते हैं. कोई चाय भी पूछने नहीं आता, दवाई भी खुद लेंगे, खाना भी खुद बनाएंगे, और कभी कभी काम पर भी जाना पड़ता है. जब तुम फेस्टिवल्स एंजॉय करते हो तब हम काम पर होते हैं. तो जब हमारे डॉलर्स गिनते हो ना, ये सारी सैक्रिफाइसेस भी गिना करो ना.
10: तो आपकी क्या राय है ये बातें सुनने के बाद, क्या आप इनसे सहमत हैं? अल्फाज ने कहा है कि कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में शायद ये सही है, लेकिन शायद बोलने का तरीका इनका सही नहीं है. लोगों को या फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि यहाँ पर कितने सेक्रीफाइसेस जो है ये करनी पड़ती हैं. ये जिस तरह से बोल रही हैं, शायद इनको लगता है कि एहसास नहीं होता है हमारे परिवार वालों को या फिर जान पहचान के लोगों को कि कितनी कुर्बानियां जो हैं ये परदेश में रहकर देनी पड़ती हैं. देन यू एंड अप अर्निंग दोज डॉलर्स, जिसके बारे में शायद बाकी लोग जो हैं ये ख्वाब देखते हैं कि हम भी शायद उस तरह से डॉलर्स कमाते. तो आओ 800-00 हम आओ 800-00-4866 ये हमारा नंबर है, जिस पर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है ये हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं. कहीं कहीं पर शायद यस ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई विदेश में रहता है, इसके पास तो बहुत पैसे होंगे. ऑटोमेटिकली यू नो एक ख्याल जो है शायद मन में आ जाता है कि विदेश में रहने वाले सारे लोग बहुत अमीर होते हैं, उनके स्ट्रगल्स जो हैं या मुश्किल का जो सामना करते हैं उनको शायद लोग नहीं समझ पाते हैं. आपका स्वागत है प्रोग्राम में, गुड मॉर्निंग. हेलो.
9: हाँ मॉर्निंग विजय जी, कैसे हो?
10: मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो?
9: एकदम मस्त विजय जी. धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा विषय आज बात करने चाहा है, और जो भी आज अभी तक बोला गया है मैं उस सब पे अग्री करता हूँ. सेकंड टू दैट, हमारे माँ बाप छोड़ने के बाद, मतलब हमारे माँ बाप ही है जो मेरे ख्याल से हमें समझ सकते, क्योंकि ऑब्वियसली दे नो अस रियली वेल. तो मुझे लगता है उनको अगर हमने एक बाजू में किया और बाकी लोग, तो बहुत से अपने दोस्त और कुछ रिश्तेदार, ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कुछ दोस्त या रिश्तेदार शायद से सिर्फ दूसरे, मतलब सिर्फ देखते कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्ट्रगल जो उस वीडियो में भी कहा गया और जो अल्फाज ने कहा, जो आपने कहा, वो शायद से वो नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ आउटकम के बारे में देखते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो हुआ है आज तक, जितने पापड़ बेले है या फिर जो भी हम बोले उसके बारे में, वो नजरअंदाज हो जाती है चीजें. तो मैं 100% इस बात पे अग्री करता हूँ. जो वीडियो में कहा गया वो थोड़ा सा फनी वे कहा गया, और थोड़ा सा मुझे लगता है जो भी रहेंगी वो, उनका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है. मुझे लगता है कुछ एक्सपीरियंस उनको आया होगा कि वो शायद से अच्छा नहीं होगा, और फ्रस्ट्रेट होके फिर उन्होंने थोड़ा सा फनी वे और थोड़ा सा अपनी दिल की बात भी उन्होंने रखी है. तो आई डोंट ब्लेम दैट पर्सन, क्योंकि होता है बहुत से बार ऐसे कि आपको जज किया जाता है कि आपने अगर कुछ ब्रांडेड कपड़े पहने, आप गाड़ी है आपकी, घर है आपका, और आप फॉरेन में रहते हो तो फिर जज होता है आपका कि अरे ये तो बहुत इजी है, आप जाओ, आपको वहाँ काम काम करना है, पैसे मिलाने है, खत्म बात. लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल विच वी ऑल नो. लेकिन किसको किसको हम बताते फिर है, यू नो वी कांट एक्सप्लेन एवरीवन. तो बेटर कि आप अपना काम करते रहो और बस जस्ट इग्नोर, दैट्स इट.
10: थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए और शेयर करने के लिए अपनी राय. कहीं ना कहीं कुछ हद तक सहमत है. वो भी ये भी बात आपने सही कही कि हर किसी का निजी अनुभव जो है ये अलग होता है, हर किसी का एक्सपीरियंस जो है ये अलग होता है. एंड उसी के बेसिस पर शायद उन्होंने ये वीडियो बनाई. क्यों बनाई, क्या उनके मन में ऐसा आया कि रास्ते पर चलते चलते उन्होंने सोचा कि एक वीडियो मैं ऐसा डाल देती हूँ. लेकिन वीडियो डालने से पहले उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो रही होगी कि लोग ऐसा फील कर रहे हैं मेरे बारे में कि ये ओवरसीज में रहती है तो इसके पास पैसे बहुत होंगे. लेकिन दे डो नॉट रियलाइज द स्ट्रगल्स दैट आई गो थ्रू एवरी डे. तो वही सोच कर शायद उन्होंने ये वीडियो जो है ये बनाई होगी, क्योंकि उनका निजी एक्सपीरियंस होगा, हमारा निजी एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको शायद उन्होंने ये देखा होगा कि उनकी ज़िंदगी से जुड़े जो लोग हैं, ऑब्वियसली दे वुड बी सम पीपल जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो समझते हैं कि बहुत मुश्किलों का सामना जो है विदेश में रहने वाले लोग भी करते हैं. लेकिन देर आर दोज जिनको शायद वो एक्सपोजर नहीं मिलता है या फिर उनके क्लोज सर्कल में इतने सारे लोग नहीं हैं जो परदेश में रहते होंगे, तो उनको उतना अनुमान शायद नहीं होगा. या फिर कुछ लोग डेलिब्रेटली जानबूझकर ही इसको इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं कि भाई अगर ओवरसीज में हैं तो डॉलर्स तो डेफिनेटली होंगे ही. लेकिन उसके पीछे जो जद्दोजहद ज़िंदगी की होती है, जो मेहनत लगती है, जो सेक्रीफाइसेस करते हैं लोग, दो दो नौकरियाँ करते हैं, वीकली रेंट, मॉर्गेज या जो कुछ भी है, जो भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, इमोशनल डिफ़िकल्टीज, जो भी सेक्रीफाइसेस ज़िंदगी में करने पड़ते हैं, उनके बारे में लोग नहीं समझते. तो अगर आपकी भी कोई राय है वो आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं. अब 5599 हमारा नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस आप हमें ज़रूर भेजें.
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Accurate traffic.
3: You made it with Caboodle.
4: Mostly cloudy, just a bit of sun today, a high of 16. You're coming in on the northern motorway fairly good. 20 minutes in from Constellation Drive. It's slow there at Esmond and back at Silverdale. A little bit slow on the bridge. Speed limits in place due to wind. Northwestern, 24 minutes. Massey to town, slow from Pātiki. Heavy at Point Chef. Southern, 38. Manukau to town, slow at Manurewa. Heavy patches, Otahuhu to Green Lane. Southwestern, slow northbound at Wiri.
3: Impress even the toughest critics with Caboodle's stylish, affordable and easy to install kitchens.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer. 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994339

0: shopping these school holidays with awesome arts and crafts deals at Warehouse Stationery. Like buy one, get one half price on Crayola, 20% off Elmer's slime kits and glue, plus loads more deals at Warehouse Stationery. Conditions apply.
1: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
1: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye jari hai on hum playing Bollywood's biggest hits. Abhi 24 minute reh gaye hain 9 bajne mein aur yaad rakhein agar aap ek Uber driver hain if you have already a claim with Not Your Fault Services to itna khayal rakhein ki it is moving forward aur a claims manager will be in touch with you. Agar aapne abhi tak apply nahi kiya hai, Intake 4 abhi khula hua hai. Intake 4 is now open. Please note that the Not Your Fault Services phone team is currently at capacity. So please do not call. Instead, apply online at nyfservices.com. Remember, nyfservices.com par aap apply kar sakte hain. हमने आपको लास्ट वीक आई थिंक वेंसडे और थर्सडे को बताया था कि फॉर्च्यून जिनकी ओर से द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हर सुबह हम लेकर आते हैं और हम आज से इनका बहुत ही शानदार दिवाली प्रमोशन जो है ये शुरू होने जा रहा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ प्राइजेस जीतने का मौका है आपके पास. ऑल यू हैव गॉट टू डू इज जब भी आप शॉपिंग करते हैं फॉर्च्यून या सिंपली के दो प्रोडक्ट्स आप खरीदें और रिसीट के पीछे अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है ये लिखकर एंट्री बिन में डाल दें और एवरी वीक नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट नोचो और साथ में लोटस सुपरमार्केट के जो आउटलेट्स हैं ऑकलैंड में यहाँ पर शॉपिंग वाउचर्स जीतने का मौका आपके पास होगा. $101 के साथ शॉपिंग वाउचर्स जो है ये जीतने का मौका एवरी वीक आपको मिल रहे हैं एट ईच ब्रांच और उसके बाद मैच ड्रो में दो लोगों को $501 का जो ट्रॉली डैश है ये भी जीतने का मौका आपको मिल रहा है. और इस खुशी के मौके पर इस दिवाली के मौके पर याद रखें फॉर्च्यून का जो चक्की आटा है फॉर्च्यून राइस जो है और साथ में फॉर्च्यून बेसन सिंपली का जो कनोला ऑयल सिंपली प्रोडक्ट्स जो है ये भी आप मेजर आउटलेट्स से ले सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं. और द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा में आज एक ड्रो जो है ये भी होने को है जहां पर आप में से दो लोगों को मिलने वाला है $251 का शॉपिंग वाउचर. एक विनर होंगे जिनको मिलेगा नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट जो नोचो में है उसके लिए $251 का शॉपिंग वाउचर. और जो लोग इधर ऑकलैंड में रहते हैं या हार्बर ब्रिज के इस पार रहते हैं चाहे वेस्ट में है सेंट्रल में है साउथ में है ईस्ट में है जहाँ कहीं भी है लोटस सुपरमार्केट के लिए $251 का जो वाउचर है ये जीतने का मौका है आपके पास. ऑल यू हैव गॉट टू डू नाउ इज आपको लिखना है फॉर्च्यून अपना नाम और किस सबब में आप रहते हैं आप कहाँ पर रहते हैं ये तीन चीज़ें लिखकर 5599 पर अभी हमारे पास भेज दें. The first thing you write is fortune, F-O-R-T-U-N-E. Uske baad, second thing you write is your name. And third thing is kis suburb mein aap rehte hain. Ye teen cheeze likhe aur 5599 par hamare paas text kare. Kyunki ye itna simple hai, to bahut zyada time aapke paas nahi hoga. और आज जाने से पहले ड्रो होगा दो लोगों का नाम निकाला जाएगा आप में से एक को मिलेगा नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट नोचो के लिए $251 का शॉपिंग वाउचर और दूसरे आप में से जो होंगे आपको मिलेगा लोटस सुपरमार्केट के लिए $251 का ग्रॉसरी वाउचर. सो गेट स्टार्टेड अगला गाना जो है तकरीबन 4 मिनटों का है तो ये टाइम तो आपके पास है ही जिस दौरान अपने मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं और आज जाने से पहले पता चलेगा कि आप में से वो कौन हैं। कृणाल हैं ग्लेनफील्ड में, सुनील पापाटोयटोय में, शेली न्यूलिन में, धीर मैस

0: बस्ती में है, अंकुर फ्लैटबुश में है, किन्नरी ग्लेन ईडन में, विकाशनी मेनुकाउ क्रीनन ब्लॉकहाउस में, सलमा पापा टोय टोय से आप सभी के मैसेजेस आ गए हैं। सो फॉर्च्यून, अपना नाम और किस सबब में आप रहते हैं ये लिखें और 5599 पर हमारे पास जल्दी से टेक्स्ट करें।
1: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: ThePropertyDirectory.com.
3: Sunny patches on quite a cloudy one today. 16 hour high. Coming into the city, northwest motorway, 24 minutes, Massey to town. We find a point shift, bit heavy there and then slow to Western Springs. Southern, 35 minutes, Manukau to the city, slow at Manurewa, then all the way from Otahu, some heavy patches to Green Lane. Southwestern fine, northern 23 and from Constellation, slow at Silverdale, Constellation and Esmond.
2: Thinking about property? Everyone you need in one place. ThePropertyDirectory.com.
1: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
4: It's your last day to party and shop half price off the entire store at Briscoe's Half Price Birthday Blowout. Plus, we're giving away $25,000 cash. Ends tonight at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
5: Okay, who drank all of the milk?
6: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
7: And phir Mrs. Singh se maine pucha, enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho? Boli, bas, mera focus hai.
8: Achha?
7: Batao, toada focus focus, saada kuch nahi.
8: Shh, Mrs. Singh.
9: Arey Pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne.
10: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281 3050 or visit focuskitchens.co.nz.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: 12 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में 12 मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट लेटेस्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में और फिर अगले घंटे आपको बताएंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है आज का हमारा डेली राउंड अप भी होगा और जाने से पहले दो बातें लेकिन अभी फॉर्च्यून का कुल मिलाकर $502 के ग्रॉसरी वाउचर्स है $251 ईच एक नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट नोचो और दूसरा लोटस सुपरमार्केट के लिए जो फॉर्च्यून की ओर से आप जीत सकते हैं और कुछ और मैसेजेस जो है ये हमारे पास आए थे प्रियंका हैं माउंट रॉस्किल से किरण ब्लॉक हाउस बे सलमा पापाटोए टोए संजू हैंडरसन में है नीतल फ्रॉम मनुरेवा ड्रीन एवनडेल में है शीतल आप भी एवनडेल में हैं शैलेश न्यू विंडसर नीलेश दयाल पापाटोए टोए और रॉड्रिक फ्रेडबुश से हैं शालिनी मैसी में हैं मनजिंदर सिंह पोकेकोही में विकास तकनीनी में हैं रेजनल कुमार पापाटोए टोए कविता ग्रीन लेन और अवि हैं मैंग्री ईस्ट में नताशा पापाकुरा में हैं नीलेश वेस्ट गेट अश्विन सिंह मैनुकाउ अविनाश आपने तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले आपको लिखनी थी फॉर्च्यून वो लिखा ही नहीं है तो आपका नाम ड्रो में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो पाया है अभी तक अमिता हैं हेलेंसविल में सुनीता मनुरेवा में और बॉबी कुमार पापाटोए टोए से आपके मैसेजेस आए हैं तो हमने बहुत ही क्लियरली आपको बताया है कि क्या आपको करना है द फर्स्ट थिंग यू राइट इज़ फॉर्च्यून क्योंकि फॉर्च्यून जिन की ओर से द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ईच वीकडे 6 to 10 AM हम लेकर आते हैं, उनकी ओर से दो लोगों को ये वाउचर जीतने का मौका है $251 इस हफ्ते की आपकी ग्रोसरी शॉपिंग जो है ये सॉर्ट आउट हो सकती है। बस आपको इतना करना है, फॉर्च्यून लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है और किस सबर्ब में आप रहते हैं वो लिखकर 5599 पर हमारे पास भेजना है और सुनते रहना है द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। नेक्स्ट आवर में ये ड्रॉ होगा, फ्राइडे को भी जितने लोगों ने अपनी एंट्रीज जो है ये भेजी थी आपके नाम भी ड्रॉ में शामिल होंगे और अगले घंटे ड्रॉ होगा, दो लोगों का नाम जो है ये निकाला जाएगा और आप दोनों को $251 का शॉपिंग वाउचर ईच जो है ये मिलने वाला है। सो टाइम है 9 बजे तक का, जब तक न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है कि हम शुरू करेंगे तब तक का वक्त है आपके पास, आप चाहें तो अपनी एंट्रीज जो है ये हमारे पास भेज सकते हैं। नंबर याद रखें जिस पर अपना मैसेज आपको भेजना है, दैट्स 5599 इस पर अपना जो मैसेज है ये आपको हमारे पास भेजना है। चाहे आप 104.2 FM पर हमें सुन रहे हैं, चाहे रोवर पर सुन रहे हैं, कहीं पर सुन रहे हैं, ऑल यू गॉट टू डू इज अपना जो टेक्स्ट है ये 5599 पर आप हमारे पास भेजें। फिलहाल आइए आज का अगला थ्रोबैक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। फिल्म आई थी सावन, उसका ये गाना आज कुणाल गांजावाला से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। इस गाने को आप एंजॉय करें, इसके बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट होगा।

0: accurate traffic.
1: China Airlines spring sale.
2: Mostly cloudy today with a high of 16 degrees, just a bit of sun. We've had speed limits in place on the Harbour Bridge due to wind this morning. Still needing a bit of care coming in. Northern flowing well though, 22 minutes Constellation Drive to the city, just slow there to Milford and Esmond. Northwestern, 23 minutes in from Massey, Finer Point Chief, heavy there, slow to Western Springs. Southern half an hour Manukau to the city, slow at Manurewa, heavy patches from Penrose.
1: Brisbane, Taipei and beyond, China Airlines spring sale. Save up to 15% travelling until August 2027.
3: And it's looking ugly out there on the roads with severe delays on all motorways into the city.
4: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and grab a barista-made coffee in minutes. The perfect traffic jam remedy at BP.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
6: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
7: Everything's better fresh at New World North Island. Get chicken thighs, $7.99 per kilo, or Rocket's Law 350 gram, $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
8: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
11: Check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
12: Good morning, is Samatik Novaj Rahim.
13: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Concerns are being raised about a link between hormone tablets and blood clots. The Danish report found women who take HRT in oral form are more likely to suffer the side effects. Auckland Uni's Michelle Wise says the results were different for gels and patches.
15: The more studies we see like this coming out, it just builds on a body of research that is reassuring for women.
14: Nearly half of voters would be happy to delay returning to surplus in order to achieve pay equity. Around 33 such claims were shelved last year. The PSA union's Fleur Fitzsimons says their poll shows only 29% disagree with a delay.
16: We're calling on all opposition parties to commit to funding pay equity settlements for New Zealand women. We don't have any faith the current government will.
14: British police are investigating after five men were arrested on suspicion of terrorism and explosive offences near a military base. Three vans were seen heading towards RAF Fairford. It's also used by the US, with President Trump claiming they were looking to do big damage.
17: Working with the British worked out great. It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
14: In sport, the Wallabies have held on with 11 men to beat the Springboks 42-38 in Perth. Four players, including captain Harry Wilson, were sent to the sin bin in a bizarre finish to the game.
18: I hope in the future we don't put ourselves in those positions, but I'm just so proud.
14: Rugby news with All Blacks Travel and Hospitality.com. Eden Park, Bledisloe Cup hospitality packages selling now. And the final day of golf's President's Cup is going down to the wire as the international team aim to beat the USA for the first time in 28 years.
19: Sports news.
13: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
20: World's best, hamari good brands bhi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: Almost 12 degrees temperature ho chuka hai Auckland mein aaj ka high 15, overnight kam se kam 11 degrees rahega. Panch badal chhayenge, reh rahe kar kuch halki barish ho sakti hai. और शाम के समय कुछ तेज हवाएं जो हैं ये भी चल सकती हैं. सनसेट आज का 7:23 PM पर होगा.
13: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एट हैरिंगटन लिविंग मोनाको. बिग ऑन स्टाइल ग्रेट ऑन प्राइस परफेक्ट फॉर योर होम. हैरिंगटन लिविंग मोनाको. व्हाट्स गोइंग ऑन क्या बकते हो.
0: अरे कहना क्या चाहते हो.
12: What's going on में आज हम बातें करने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी की. और या वो स्टोरी जो है ये हम आपके लिए इनफैक्ट लेकर आए हैं. और ट्रैफिक जेम्स के बारे में आपने शायद बहुत सुना होगा. यहाँ ऑकलैंड में भी ट्रैफिक जेम जो है अक्सर होता है. इट मे बी नॉट एज बेड एज सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन ऑब्वियसली हमारे लिए तो फ्रस्ट्रेटिंग होता ही है. लेकिन बेंगलुरु का जो ट्रैफिक जेम है ये बहुत गंदा होता है, जो जो कुछ मैंने पढ़ा और सुना है. एंड इवन शॉर्ट कम्यूट्स के लिए काफ़ी टाइम जो है ये लग जाता है. लेकिन एक वीडियो हाल ही में आया है जहां पर एक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है ये सामने आया है. और ये ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं जहां पर गाड़ियां जो है एक क्यू में फंसी हुई हैं इनसाइड अ रेसिडेंशियल सोसाइटी. यू नो इंडिया में सोसाइटीज में लोग रहते हैं. एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं हाउ वंडरिंग फुटप्रिंट, उन्होंने एक वीडियो जो है ये इंस्टाग्राम पर जाकर शेयर किया और दिखाया कि सोसाइटी के अंदर किस तरह से लोग जो है ये ट्रैफिक में फंसे हुए हैं. एंड माई गॉड, यू नो चीटी की चाल पर जिस तरह से यहाँ स्टेट हाईवे 1 पर आप ट्रैवल करते हैं ट्रैफिक लगा होता है. कभी 20 किलोमीटर्स पे आवा, कभी 10 किलोमीटर्स पे आवा, कभी कभी रुक जाते हैं. इस तरह का ट्रैफिक जो है इस सोसाइटी में देखने को मिला है. और वीडियो जो है सैटरडे को अराउंड 2 PM रिकॉर्ड किया गया. और ये जो यूज़र हैं इन्होंने अपने कमरे से इसे रिकॉर्ड किया. According to her, the residents were facing congestion even before reaching the main road. Vehicle जो है society के exit के पास कतार में यानी queue में तकरीबन आधे घंटे तक फंसी रही just to get out of the complex. अब ज़रा सोचिए, ऐसा भी traffic का हाल होता है. बाहर रास्ते पर आने से पहले, main रास्ते पर आने से पहले ही आधे घंटे का queue जो है ये society में ही लगा होता है.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो क्या हो रहे हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में, इसकी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं. और याद रखे, एनजेड दिवाली 2026 ये मेलकाओ वेलड्रोम पार्क में होने जा रहा है. और ये रहेगा सैटरडे को 3rd of October. दिन में 1 से रात 9 बजे तक एंट्री यहां पर आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है. मोहम्मद सदीक एंड टीम लाइव फ्रॉम इंडिया विद डीजे लकी. खाना पीना, फूड स्टॉल्स, फन राइड्स बच्चों के लिए और बहुत ही स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स फिनाले जो है ये आप एंजॉय कर सकेंगे. सो मेक श्योर इसे सैटरडे को आप पहुंच जाएं और महिंद्रा एनजेड दिवाली में आप हिस्सा ले सकते हैं. वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापेटोटोई में आज से वेद प्रचार सप्ताह जो है सालाना ये शुरू होने जा रहा है और संडे तक चलता रहेगा. इसी रविवार तक ये जारी रहेगा. शाम तकरीबन 6:30 बजे से प्रचार जो है ये आरंभ हो जाएगा, जिसमें आप ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं. और इसके साथ न्यूजीलैंड में आर्य समाज की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ जो है ये भी इस दौरान मनाई जाएगी, तो आप जाकर इसमें ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं. श्री राम मंदिर पर श्री राम कथा जो है ये होने जा रही है इसी बुधवार से अगले मंगलवार 6 अक्टूबर तक. रात 7 से लेकर 9 बजे तक कथा जो है ये होगी. पूज्य राजन जी के साथ आप जाकर कथा जो है ये श्रवण कर सकते हैं. आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं या आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जिसमें आप सोचते हैं कि लोगों का हिस्सा लेना चाहिए, लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, तो उन चीज़ों की जानकारियां जो हैं ये आप हमारे पास भेज सकते हैं. buzz@hamfm.com, buzz@hummfm.com पर अपने ई मेल्स जो है ये आप हमें ज़रूर भेजें.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
6: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
7: Hungry? Feel like pasta? Or a pie? How about pasta in a pie? Zed's new beef brisket mac and cheese pie is what you need. Head to Zed and for only $7.50, you can grab a delicious beef brisket mac and cheese pie. Zed is for the love of pies.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है.
8: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया. नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
11: MediaWorks Complaints. How can I help?
12: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
11: Nice.
12: And you talked me into creating this funny character.
11: Great.
12: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
11: Are you?
12: Yes.
11: Are you Bobby the baker?
12: Yes.
11: What's that thing you do again?
12: Stop it.
11: You bring the mouth.
12: Stop it.
11: I'll bring the pie.
12: Stop it, please.
11: Okay.
12: Yeah, sure, I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
11: So what's the problem?
12: My name's Bruce.
2: Advertise with
13: Media Works.
2: New Zealand listens to us.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. Aapke liye jari hai on hum playing Bollywood's biggest hits. जो वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स 2026 हैं ये भी हुआ है और कल मालदीव्स में ये हुआ और कई जो एशिया ओशानिया और इंडियन ओशन गाला सेरेमनी है ये मालदीव्स में कल हुआ और जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताते हैं जो लिस्ट है इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं एशियाज लीडिंग डेस्टिनेशन वियतनाम वियतनाम को एशिया का लीडिंग डेस्टिनेशन अनाउंस किया गया है एशियाज लीडिंग बीच डेस्टिनेशन फिलीपींस एशियाज लीडिंग एयरपोर्ट हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशियाज लीडिंग टूर ऑपरेटर विया ट्रैवल एशियाज लीडिंग न्यू होटल इंटरकॉन्टिनेंटल सपोरो ओशनिया या इंडियन ओशंस लीडिंग बीच डेस्टिनेशन सेशल्स Indian Ocean's leading destination, Maldives. Indian Ocean's leading luxury island resort, the St. Regis Maldives Vomuli Resort. इसे अनाउंस किया गया है. Oceania में कौन कौन से awards दिए गए हैं? Oceania's leading destination, New Zealand. Oceania's leading city destination, Sydney, Australia. और Oceania का जो लीडिंग बुटीक होटल अवार्ड है ये ओमाना न्यूजीलैंड को दिया गया है तो न्यूजीलैंड हैज क्लेम्ड टू और जो रीजनल विनर्स हैं अब ये कॉम्पीट करेंगे वर्ल्ड लेवल टाइटल्स के लिए और ये वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स ग्रैंड फाइनल सेरेमनी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर जो है ये होता है अफ्रीका का जो है ये पूरा हो चुका है अफ्रीका का लीडिंग डेस्टिनेशन वॉज टंजानिया अफ्रीकाज लीडिंग सिटी डेस्टिनेशन केप टाउन Africa's leading beach destination, Zanzibar in Tanzania. Africa's leading hotel, Fairmont Mount Kenya Safari Club, Kenya mein. Africa's leading luxury lodge, Sylvan Safari, South Africa mein. Africa's leading airline, Kenya Airways. Or Africa's leading low-cost airline, Fly Safair, South Africa ko ye award jo hai ye diya gaya hai. So these were some of the awards. Middle East Gala Ceremony jo hai ye 13th of September ko hua tha aur iske alawa Europe Caribbean aur American jo hai ye 11th of October ko hone ko hai in Jamaica aur Europe ka jo Gala Ceremony hai ye 17th of October ko hone ja raha hai Montenegro mein to sabhi jagah se jo winners hai ye select kiye jayenge and they will fight for a spot or an award जो ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड्स ग्रैंड फिनाले है इसमें तो जब भी डिटेल्स हमारे हाथ लगेंगे ये आपकी खातिर हम पर हम जरूर लेकर आएंगे
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
4: मैं लाऊं अपना ए गेम
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: हॉल बना दे.
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.
2: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा.

surfers, sports events और stand-up paddle boarders पर ये rule लागू नहीं होगा। फार्मेक ने कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली और हार्ट अटैक स्ट्रोक के रिस्क को कम करने वाली दवाई रोसुवास्टेटिन के से सारी एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। अब कोई भी पेशेंट बिना किसी प्रायर अप्रूवल या खास क्राइटेरिया के इस दवा को ले सकेगा। इससे लगभग 81,000 नए लोगों को पहले ही साल में फायदा मिलने का अनुमान है। वीजा और पेरेंट वीजा में बदलाव जो 1st और 5th अक्टूबर से असर में आ रहे हैं। 1st अक्टूबर से जनरल, बिजनेस ग्रुप्स, स्पोर्ट्स, मीडिया और मेडिकल ट्रीटमेंट सहित सभी विजिटर और ट्रांसिट वीजा एप्लीकेशंस अब सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट होंगी। पेपर फॉर्म्स बंद किए जा रहे हैं। याद रहे 1st ऑफ अक्टूबर से जनरल, बिजनेस ग्रुप, स्पोर्ट्स, मीडिया और मेडिकल ट्रीटमेंट सहित सभी विजिटर और ट्रांजिट वीजा एप्लीकेशंस अब 1st ऑफ अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगी। पेरेंट रेसिडेंट वीजा सिस्टम। पेरेंट रेसिडेंट वीजा जो 2,500 एनुअल कैप है के लिए 90% सिलेक्शन डेट ऑर्डर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से होंगे और बाकी 10% बैलेट लॉटरी से। नए सिस्टम में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अब 2 साल में एक्सपायर नहीं होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस दैट आर कमिंग इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st एंड 5th ऑफ अक्टूबर, जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी होगा। इसके अलावा बाकी की जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन कैंपेन जो है ये शुरू कर चुके हैं। नेशनल लीडर क्रिस्टोफर लेक्सन का मानना है कि उनके जो पोटेंशियल कॉलिशन पार्टनर हैं उनकी एक पॉलिसी जो है पागलपन है और ये नहीं हो सकता। नेशनल हैज़ कंसिस्टेंटली अटैक लेबर और उनके जो कॉलिशन पार्टनर्स हैं ग्रीन्स और ते पार्टी माउरी और साथ में अपॉर्चुनिटी सेइंग कंबाइंड दे वुड इम्पोज 9 न्यू टैक्सेस। लेबर हैज ओनली कमिटेड टू इट्स ओन कैपिटल गेन्स टैक्स। फिलहाल न्यूजीलैंड फर्स्ट नेशनल का जो पोटेंशियल कॉलिशन पार्टनर है इज कैंपेनिंग ऑन बाइंग बैक BNZ फॉर अराउंड $20 billion। क्रिस्टोफर लेक्सन ने RNZ की मॉर्निंग रिपोर्ट को बताया कि ये नहीं होगा। इट्स एब्सोल्यूट मैडनेस। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड और कौन कौन सी बातें जो है ये सामने आती हैं। ऑल वाइट्स की जीत कल रात या आज तड़के सुबह एक इंटरनेशनल फ्रेंडली में चाइना के खिलाफ 3-0 से हुई। ये मैच जो है ये चाइना में खेला गया और उसके बाद टीम का अब अगला फ्रेंडली इंटरनेशनल जो है ये इसी थर्सडे को 7 PM से खेला जाएगा और ये मैच पैनामा के खिलाफ होगा। इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। और इसके अलावा UEFA नेशंस लीग के जो मैचेस अभी खेले जा रहे हैं या खेले जा चुके हैं, ग्रीस की जीत आज जर्मनी के खिलाफ 1-0 से हुई। दूसरा मैच जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है उसमें पोर्चुगल की जीत अभी नॉर्वे के खिलाफ 2-1 से हो रही है। इसके अलावा अन्य जो खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं जो डेली राउंडअप में आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं उनमें कहा जा रहा है कि ग्रीन्स और नेशनल जो है ये कुछ पॉलिसीज को लेकर एक दूसरे से बातचीत जो है ये कर रहे हैं कि किस तरह से देश में लोगों के लिए ज़िंदगी जो है और पॉलिसीज जो है ये बेहतर बनाई जाए। और साथ ही में बाकी की खबरों की ओर अगर देखें माउंट एल्बर्ट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और लेबर पार्टी जो है उन्होंने कई बातें जो है ये की हैं अबाउट व्हाट द सिचुएशन इज अराउंड द इलेक्ट्रेट। और यहाँ की जो लोकल MP हैं उन्होंने हेलन वाइट ने बताया कि लोग जो इधर उधर बिखरे हैं उन सभी को एक साथ लाना और अभी

0: वर्तमान स्थिति के बारे में उनको जानकारियां देना बहुत ही जरूरी है। ये रहा आज का डेली राउंडअप। आज के लिए हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: लेट्स गो
2: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपर।

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: 2 bojao, papi ho. 2 bojao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातों
2: का वक्त अब हो चुका है, लेकिन उससे पहले जो एशियन गेम्स के जो क्रिकेट क्वार्टर फाइनल्स हैं उनकी ओर अगर देखें, पहला क्वार्टर फाइनल जो है ये हांगकांग और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दूसरा क्वार्टर फाइनल, जैसे हमने आज सुबह आपको बताया, शाम 6 बजे के वक्त ये शुरू होगा। अफगानिस्तान विल टेक ऑन इंडिया। थर्ड क्वार्टर फाइनल नेपाल वर्सेस श्रीलंका। और आखिरी क्वार्टर फाइनल जो है ये खेला जाएगा बांग्लादेश और मलेशिया के बीच। फर्स्ट सेमीफाइनल जो है ये थर्सडे को खेला जाएगा और सेकेंड सेमीफाइनल भी थर्सडे को, फॉलोड बाय थर्ड प्लेस प्ले ऑफ एट अराउंड 1 o'clock ऑन सैटरडे। और फाइनल जो है एशिया कप क्रिकेट कॉम्पिटिशन का सैटरडे को शाम 6 बजे से खेला जाएगा। तो इन पर अपडेट्स जो है ये आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे। फिलहाल ये भी बता दें, आज जो ड्रॉ है जो होने को था, अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम मैसेजेस जो अभी भी प्रोसेस हो रहे हैं। तो जैसे ही द प्रोसेसिंग इज़ डन, मोस्ट प्रोबेबली कल इसका ड्रो जो है ये हम करेंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। सो आप इसके लिए ज़रूर तैयार रहें। और खेद है कि आज ये ड्रोज जो है ये हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। आज की दो बातें जो हैं, कहते हैं कि रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही, रहने दे एक मुलाकात उधार यूं ही, सुना है उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। और आज की दूसरी बात, कहते हैं कि आज की जो दूसरी बात है इन पर, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दें अगर वक्त मिले तो, सोचे भी इसके बारे में। कहते हैं कि जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में जमाना है।
3: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

और नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में आज 28 सितंबर यानी आखिरी मंडे ऑफ सितंबर है और ऐसे भी चुटकियों में सितंबर का महीना निकल गया. देखिए ना, गणपति जी आए, गणपति जी चले गए, पितृपक्ष स्टार्ट हो गया और ऐसे में बस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीकेंड जहाँ पे नवरात्रि भी अपना जोश लेकर आ जाएगा. बट अभी के लिए आपका जोश कैसा है? हाउ इज द जोश? मेरा जोश अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा भीग भाग गई हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना शॉर्ट डिस्टेंस जब आप कार से स्टूडियो की तरफ बिल्डिंग में घुसते हो उस समय लगता है कि अरे अभी अब क्या बारिश आएगी, अब धड़ धड़ धड़ धड़ धड़. इट अनॉयड मी टू नो एक्सटेंट. आई डोंट नॉट नो अबाउट यू, हाउ वाज इट बीन? या तो बाहर खिड़की के बाहर देख रहे हैं आप अपने ऑफिस से, या फिर गाड़ी चलाते चलाते सुन रहे हैं रेडियो, या फिर आप आराम से गर्म चाय की प्याली लेकर बैठे हैं या कॉफ़ी लेकर बैठे हैं overlooking the garden. What are you doing? Very, very happy Monday to you. मैं आपकी reminder clock आ गई हूँ आपको बताने के लिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी इतनी अच्छी है कि इसको आंखों में भर लीजिए और कोशिश कीजिए इसे जितना ज़्यादा आप जी सके जी लें, क्योंकि पलट के लौट के आपके पास वापस नहीं आएगी. चलो मुझे जी लो. तो आई होप ओवर द वीकेंड आ गई अपने मुद्दे पर. करेक्ट, अपने वीकेंड पर आपने अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला. बस यही बातें कहने के लिए मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक आ जाती हूँ कशिश फूड्स के सौजन्य से, जहाँ मंडे टू फ्राइडे आपका मेरा साथ बना रहता है 10 से 12 बजे के दरमियान. थोड़ी देर बाद हमारे एक्सपर्ट लीगल एसोसिएट से आ जाएंगे. कोई सवाल 5599 पे ज़रूर टेक्स्ट कीजिए. सुनते हैं. बचाओ क्या? By the way, अगर आज आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. डू यू नो दैट यू शेयर योर बर्थडे विद नन अदर दैन द आर्टिस्ट जो इस समय इस गाने पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कौन थे स्क्रीन पर. ओके, आज उनका बर्थडे है. अलॉन्ग विद दैट आज बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ लेट लता मंगेशकर जी एज वेल.

0: Wake up!
1: Experts Adda.
2: Experts Adda mein, I have been trying to call Raj Pradeep Singh ji. Unfortunately, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, बट कोई बात नहीं. मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ. सेवरल न्यू लॉज, जहाँ रोड रूल्स, लाइफ जैकेट, कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन टू वीज़ा एप्लीकेशंस, ये सब अक्टूबर के महीने से शुरू होने वाला है. सो रोड्स पर फ्रॉम 1st of October, ड्राइवर्स, साइकिलिस्ट, ई स्कूटर राइडर्स, ये काफ़ी सारे रोड के रूल्स चेंज देखने वाले हैं. ये जहाँ पे कवरिंग, ओवरटेकिंग, गिव वे रूल्स फॉर बसेस, एंड जहाँ टू व्हील्ड रोड यूजर्स कैन ट्रैवल सेफली. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्रिस बिशप जी ने बताया कि ये इंटेंशंस जो हैं इनकी, ये रूल्स क्लैरिफाई करने के लिए हैं, ताकि कीवीज रोड यूज़ का इस्तेमाल करें और रोड यूज़ के साथ फुटपाथ का भी इस्तेमाल करें. वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज़ दैट साइकिलिस्ट जो हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है, रोड यूज़र्स को और साथ साथ हॉर्स राइडर्स को. तो ये रूल जो है ये चेक कर लिया गया और इसकी स्पीड लिमिट के ऊपर भी काम चल रहा है. बच्चे अंडर 12 will now be able to legally, ride their bikes on the footpath, और एक adult उनके साथ में होना चाहिए. Drivers will have to have a new give way requirement around buses, जहाँ पे buses जब वे pull out करते हैं from bus stops to onto the road, इनकी speed limit 60 kilometers or less है, और साथ साथ documents के ज़रिए पता चलता है कि this will become a legal requirement. If not mandate, e-scooters will also be legally able to use cycle lanes as of now. Aur saath saath life jackets are compulsory now at recreational boats up to 6 meter height ke saath saath. Aur ye vessel jo hai, jab aa raha hota hai, khas taur pe this is going to come effect with effect from 9th of October. ठीक है, ये भी आ गया. कोलेस्ट्रॉल ड्रग के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक मेडिसिन है. It is used to lower cholesterol. It's called rosuvastatin, I think so. Rosuvastatin. और ये cholesterol reduce करता है, heart की जो stroke की risk ये जो है ये reduce करता है. It's going to be widened from 1st of October. And ये eligibility criteria जो drug की restriction के आसपास था उसको भी हटाया जा रहा है. So now you'll be able to access this without meeting a specific criteria. 76,000 people right now are using this. Online visa and a parent visa overall jo hai 1st October se, ye ek visitor and transit visa ki applications jo hain, they will be made online as immigration New Zealand ne paper ko phase out kar diya hai. Aur ye changes jo hai cover karenge transit visitor visa including general, business, group, academic, medical, parent and grandparent, sports events, visiting media categories, etc. तो ये जो इन ये जो न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन है, दिस इज़ मूविंग ऑनलाइन. इट विल प्रॉब्ली गेट ईजियर फॉर पीपल टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ट्रैक एप्लीकेशंस एंड रिड्यूस एरर्स एंड डिलेज.
1: माय टाइम विद कशिका.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं.
2: अच्छा, ऑफिस शाउट आउट का वक्त आ रहा है. 5599 पे मुझे जरूर टेक्स्ट करके बताओ आप कहाँ से सुन रहे हो.
4: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने. हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने.
5: कॉफी, the usual?
6: How about the unusual?
7: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
8: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
9: Trade Depot.co.nz.
0: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
9: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
5: Nice.
9: And you talked me into creating this funny character.
5: Great.
9: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
5: Are you?
9: Yes.
5: Are you Bobby the Baker?
9: Yes.
5: What's that thing you do again?
9: Stop it.
5: You bring the mouth.
9: Stop it.
5: I'll bring the pie.
9: Stop it, please.
5: Okay.
9: Yeah, sure. I might have three stores now, but Bobby's more famous than me.
5: So what's the problem?
9: My name's Bruce.
10: Advertise with MediaWorks.
5: New Zealand listens to us.
11: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
12: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है हाँ.
13: अच्छा
12: बताओ तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं
13: मिसेस सिंह
14: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
1: My Time with Kashika brought to you by Kashish Foods Eat better, live better
16: Office Shoutout
2: तो ऑफिस शाउटआउट में मेरे पास दरअसल यहाँ पर टेलीफोन लाइन पे लीगल एसोसिएट से राज प्रदीप सिंह जी आ गए फाइनली आई कुड कैच हिम एंड आई एम श्योर इनकी टीम सुनी रही थी जब मैं आपको राज जी आवाज़ दे रही थी आई एम वेरी श्योर यू मस्ट बी बिजी विद ऑल द न्यू अपडेट्स व्हिच यू हैव फॉर अस हाउ आर यू गुड मॉर्निंग टू यू सर
17: गुड मॉर्निंग कशिका जी
2: हाँ जी सर कैसे हैं
17: वेरी गुड बस चल रहा है यू नो एज यू नो वर्क इज ऑलवेज बिजी सम टाइम इन कोर्ट सम टाइम इन ऑफिस
2: जी
17: सो इट्स वेरी वेरी बिजी इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ यू नो क्रिमिनल वर्क बट ऑफ कोर्स यू नो टुडे वी कैन टॉक अबाउट यू नो पेरेंट्स वीजा ऑप्शंस
2: ओके क्योंकि
17: बहुत सारे पेरेंट्स हैं हाँ जी बिल्कुल तो जो पेरेंट्स का जो वीजा ऑप्शंस हैं सबसे अच्छी बात तो ये है कि भी दे गॉट अ थ्री टाइप्स ऑफ वीजा ऑप्शन इन न्यूजीलैंड वन इज अ जनरल विजिटर वीजा इट मींस वो 9 महीने तक मैक्सिमम न्यूजीलैंड में रह सकते हो 9 महीने में कभी भी आ जा सकते हो चाहे आपने 2 महीने रहना है अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ या आपने टोटल 9 months रहना सो 1 to 9 months दैट्स अ फर्स्ट ऑप्शन फॉर विजिटर वीजा सेकेंड ऑप्शन है आपके पास अगर आपके बच्चे यहाँ पे कोई भी चाहे लड़का है लड़की है या यू नो इन लॉज हैं उनके आपके जो बहू है या सन इन लॉ है तो वो लोग भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं 3 साल के विजिटर वीजा पे उसको पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हाँ जी जनरल विजिटर वीजा बोलते हैं सो उसके अंदर भी कंडीशन है कि यू कैन स्टे इन 6 months एट वन टाइम एंड टोटल टाइम 18 months इन 36 months और तीसरा है पेरेंट्स का बूस्ट वीजा उसके अंदर है वो 5 साल का वीजा है पेरेंट्स बूस्ट वीजा और उसके अंदर आपकी कोई कंडीशन नहीं है कि भी 18 मंथ्स में आपने जनरल विजिटर वीजा की तरह 9 मंथ्स रहना है या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जनरल पेरेंट्स कैटेगरी के अंदर 36 मंथ्स में 18 मंथ्स में उसमें 5 साल का वीजा है सिर्फ आपका जो मेडिकल है पीसीसी है वो आपका ठीक होना चाहिए और जो मेडिकल 3 साल में एक्सपायर हो जाता है तो आपको जब आपका वीजा खत्म होने जब आपका मेडिकल एक्सपायर होने वाला होता है तो उससे 3 महीने पहले यू नीड टू गो बैक टू योर होम कंट्री और आउट ऑफ न्यूजीलैंड टू अपडेट योर मेडिकल्स और उसके अंदर पूरे फिर आप 5 साल यहाँ पे रह सकते हो आपको जाना नहीं पड़ता और साथ में ही है पेरेंट्स के रेजिडेंस वीजा इट मीन्स बेस्ड ऑन योर इनकम एंड सेम है जो 5 साल वाला वीजा है वो भी बेस्ड ऑन योर इनकम लाइक चाहे आपका बेटा है, बहू है, दामाद है, या दो भाई हैं, दो बहनें हैं, वो सारे लोग मिलके अपनी इनकम के बेस पे 5 साल का बूस्ट वीजा एंड रेजिडेंस वीजा आपका स्पॉन्सर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं. और साथ में अब ये भी हो गया है कि जो आपका ईओआई का है वो जब आपने डाला उसके हिसाब से आपका आएगा. तो बैलेट वाला सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन स्टिल 10% लोग स्टिल बैलेट के अंदर होंगे उसके अंदर जैसे निकलेगा. तो बहुत सारी ऑप्शंस है पेरेंट्स के लिए. और अब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने सारा कुछ ऑनलाइन भी कर दिया है, तो वो ज्यादा इजी है सबके लिए, पेरेंट्स के लिए
2: जी.
17: तो सारी चीजें आप अपना ऑनलाइन कर सकते हो, ये मच बेटर है. और उसके लिए जो भी डिटेल में आपने अपने केस हमारे साथ डिस्कस करने हैं, चाहे वो 2-3 महीने का विजिटर वीजा है, या 5 साल का बूस्ट वीजा है, या 3 साल का मल्टीपल है, या उनके इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या पीसीसी है, या मेडिकल है, बर्थ सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस है, ईओआई है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं.
2: बिल्कुल. एंड legalassociates.co.nz पे आप भी ऑनलाइन जाकर, जहां पे इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ऑनलाइन हो गया है, उस तरह आप भी ऑनलाइन जाकर इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और इनके साथ अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं. legalassociates.co.nz इनका वेबसाइट एड्रेस है. 09279-39439 इनका नंबर भी है. थैंक यू सर, एंड अगले हफ्ते आपसे फिर बात होगी.
17: थैंक्स अ लॉट कृषिका जी. बाय.
2: ठीक है, बाय.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: फूड ब्रांच नहीं है।
1: वैसे हमारी कोई ब्रांच है तो नहीं, लेकिन एक एक चीज़ जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है कि कुछ लोग ऐसे जैसे सब ऊबर ड्राइवर्स होते हैं, वो ब्रांच आउट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज के ज़रिए। लेकिन अगर आपके पास एक क्लेम है ऊबर ड्राइवर्स और आपको लगता है कि वो आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा, तो द क्लेम्स मैनेजर एक्चुअली विल बी गेटिंग इन टच विद यू। आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी इनटेक नंबर 4 इज़ नाउ ओपन, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और नोट कीजिएगा कि इनकी फ़ोन टीम बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज की, इसलिए आप इन्हें फ़ोन मत कीजिए। बेटर रहेगा कि nyfservices.com के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं, nyfservices.com, NYF का शॉर्ट फॉर्म था नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज। यस करेक्टली गेस्ट, आज रणबीर कपूर का भी बर्थडे है।

0: पोस्टर में देख के तो मतलब इतना हैवी ड्यूटी लग रहा है सब कुछ, लेकिन यही कह सकते हैं कि द पोस्टर्स आर स्लोली कमिंग, द फिल्म के गाने आर स्लोली कमिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग एपिक. ऑफकोर्स इट्स एन एपिक इट्सेल्फ, लेकिन प्रमोशनल कैंपेन जो है अब ये शुरुआत इसकी हो चुकी है.
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
6: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
7: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5k min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply.
8: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. दो लकी विनर्स, हर एलिजिबल होम लोन ऑफ 500,000 या उससे ज्यादा ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ में एंटर करता है. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. विजिट financeworld.co.nz/bali. फाइनेंस वर्ल्ड लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर.
9: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
10: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: So Dream Diary में आज जब मैं पहुंची तो एक चीज जो है, एक तो पहली बात ये डेलाइट सेविंग ने आपको कैसा लिया है, भूली गई मैं उसे पूछना आपसे. डेलाइट सेविंग, ऑनेस्टली टेलिंग यू, ओ माय गॉड, अभी भी मुझे लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई. ऐसा होता है ना, एंड ये यू नो इंडिया का गैप 7.5 घंटे का हो जाता है और फिर जब लोग इंतज़ार करने लगते हैं ना फैमिली मेम्बर्स, तो लगता है अब कब सुबह हो, कब सुबह हो. ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं? मैं तो कल एक जगह पहुंचना था मुझे, मैं लेट पहुंची और आज भी लेट पहुंची. आई थिंक कि एक हफ्ते तक इंटरनल क्लॉक जो हमारी बॉडी रिदम को जो है वो चेंज करती है, राइट. ओके, चलो यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन मेरे पास आपके साथ ड्रीम के बारे में बात करने के लिए कुछ है. एक ड्रीम होता है सबका कि कहीं ना कहीं हमें लगता है हम एक सेलिब्रिटी बने, हम हमारे साथ ये हो, हमारे साथ वो. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अगर आप कभी ड्रीम करते हैं दैट यू बिकम अ सेलिब्रिटी और यू वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी, यू आर क्रेविंग फॉर रिकग्निशन. एक नए सोशल रोल को आप अदा करने के लिए तैयार हैं. यू वॉन्ट टू फील मोर वैल्यूड, आपको चाहिए थोड़ी और अपने लिए इम्पोर्टेंस. तो ये एक रिकग्निशन की जो मैं बात कर रही थी वो कभी कभी होता है, कभी कभी आप फील करते हैं कि यू आर अंडर अप्रिशिएटेड. आप कहीं अपने काम पे इनविजिबल हैं या अपने घर में भी आप इनविजिबल हैं और ये ड्रीम आपको वो चीज़ सुन लेता है और फिर वो आपके लिए डिपिक्ट करने लग जाता है. आप वही ड्रीम करने लग जाते हैं, फिर आपका एक डिज़ायर होने लगता है सक्सेस के लिए, जो रिफ्लेक्ट करता है आपका एम्बिशन, आपका ड्राइव, आपकी हिडन पोटेंशियल. मे बी यू आर नाउ रेडी टू टेक अप द लीडरशिप रोल. आप किसी टैलेंटेड वर्ल्ड में अगर हैं तो व्हाई नॉट, डेफिनेटली. चलिए सुनते हैं बर्थडे बॉय की फिल्म का ये गाना जिसमें वो डेब्यू किया था और किस चीज़ के साथ डेब्यू किया था, याद है?
10: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल.

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
1: इस पर्टिकुलर सॉन्ग को मैं कह सकती हूँ दो लेजेंडरी लोगों ने एकदम से क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ, आई कैन से दैट इतना मेमोरेबल बना दिया, इतना नोस्टैल्जिक बना दिया, हिस्टोरिकल बना दिया इज़ द राइट वर्ड. लेजेंडरी लेट इसमें लता मंगेशकर जी की आवाज़ है और द फर्स्ट बॉलीवुड्स आई कैन से सुपरस्टार वुमन सुपरस्टार इस गाने में नज़र आई थी. एंड क्या बात थी, मतलब क्या कॉम्बिनेशन था, ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन था और लगता है ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही वापस बनकर आएगा. लम्हे जैसा वे बिफोर इट्स टाइम ये फिल्म जब बनी थी तब लोगों को पता नहीं था कि इस तरह से इतने एज गैप्स में भी लोगों के अफेयर्स लोगों का प्यार हो सकता है और वो भी ट्रू लव. इज़न दैट ट्रू. और जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो क्यों नहीं लम्हे का ये गाना सुने और एक ट्रिब्यूट दे दें लता जी को और साथ साथ श्रीदेवी जी को. चलिए सुनते हैं, थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं.

0: मिड मॉर्निंग मजा में आप सबका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले लेफ्ट ओवर्स में कुछ आपके पास कोई टिप शिप हो तो मुझे देना। आज थोड़ी नींद में हूँ क्योंकि ये डे लाइट सेविंग जो होता है ना, आपको पता नहीं कितना परेशान करता है। आई थिंक आई नीड अ कॉफ़ी, बट वेरी सून आई हैव इट वंस आई फिनिश माई शो। ओके, सिक्स वर्ड स्टोरी, टेल मी समथिंग अबाउट इन सिक्स वर्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से रिलेटेड सिक्स वर्ड की स्टोरी आपकी इस पूरे हफ्ते चलेगी, और देखते हैं इस हफ्ते में कितने लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड सिक्स वर्ड की स्टोरी बना सकते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो मैं कशिका आपका साथ निभा रही हूँ 12 बजे तक। कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जी हुजूर, बिल्कुल बर्थडे बॉय का गाना
1: बजाओ। क्या

0: कहते हैं ना कि ईट बेटर लिव बेटर, लेकिन एक चीज़ है, यू नो सर्टन पीपल थिंक दैट वॉट शुड वी डू इन केस देयर इज अ PCA टेस्ट यू नो फॉर प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी कॉमन अमंग अबाउट 200 इन एवरी 1000 ऑस्ट्रेलियन मैन हैव गॉट प्रोस्टेट कैंसर एंड बाई द एज ऑफ 85. But the chances of dying from it is much lower compared to the others. So, ye basically prostate specific antigen PSA blood testing bahut hi widely test ke liye detect karne ke liye you know mana jata hai. And people jinki age 45 to 50 ke hote hain and over 70, they are eligible for the test, and you can talk to the GP about the potential risks and benefits. किस तरह से आपके खुद के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं. सो PCA इज प्रोटीन मेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो है आपको बता देता है कि किस तरह से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है. एंड द पॉइंट ऑफ टेस्ट इज़ टू कैच दिस डेंजरस कैंसर एट द राइट टाइम. सो द गाइडलाइन सेज दैट 2026 में ये काफ़ी पॉसिबिलिटी से लोगों के लिए मेन में हायर रिस्क के हिसाब से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. ओके, माई नेक्स्ट थिंग इज वॉट इज कमिंग अप नेक्स्ट इज सिक्स वर्ड स्टोरी ऑन सोशल मीडिया. लेट्स वेट एंड वॉच. आई हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स.
1: ड्राइविंग यू होम ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
5: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for Nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.
6: 3, 2, 1, rush!
7: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
8: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom! Supercharge your business today with the help of Xero.
9: Search Xero with an X! TradeDepot.co.nz.
10: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Complete shower, vanity and toilet set, just $9.95. Finish it with a gunmetal basin mixer for just $59. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
11: Get the bold new flavours of Subway rice bowls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fibre, warm brown rice and your choice of salads, from just $11. Eat fresh with new Subway rice bowls.
12: At Woolworths, we're helping you get more value every day, like a massive half price off Tegel products. Stock up on Tegel takeouts, burgers, tenders, nuggets and more. T&Cs and exclusions apply.
13: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
4: word story.
0: आज मेरे सिक्स वर्ड स्टोरी में मेरे साथ बड़े सारे चैंपियंस हैं और उसमें से धवल, हाउ आर यू? आपने लिख के भेजा है, पोस्टेड एवरीथिंग, शेयर्ड नथिंग ट्रूली धवल. आई नो इट्स ट्रू, पोस्टेड एवरीथिंग, शेयर्ड नथिंग ट्रूली. हम लोग कभी कभी ये चीज़ें जो होती ना, इट्स अ फेक वर्ल्ड, डोंट यू थिंक सो? आई एम नॉट टू श्योर, बट या ऐसा हो ही जाता है, हर एक चीज़ पोस्ट करते चले जाओ, करते चले जाओ. बट क्या आप अपनी चीज़ें अंदर से जो माइंड में होती है वो शेयर करते हैं या नहीं करते? ओके, आई हैव अनदर वन. रील्स आंट रियल, रील्स आंट रियल, हाउ एवर इट्स ट्रेंडिंग. आई टोटली अग्री, रील्स रियल नहीं होती हैं. अभी जैसे कि यू नो, कोई कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है. मैं एक फेक रील में फंस गई थी and it was like, oh my god, how can I get into something like this? But here at MediaWorks, हमारी सिक्योरिटी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं एंड अब मैं उन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ. बट ये ट्रेनिंग्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, आगे चल के काफ़ी सारे इसके साथ फ़ायदे होते हैं. लेकिन जब मैं फ़ायदों की बात करती ही हूँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बियॉन्ड द डेट, एक सक्सेस क्या मीनिंग देता है आपके लिए? वी आर सेटल्ड, क्या आपको लगता है ऐसा एक रियलिटी होता है कि नहीं? या लिसनर्स अपने आप को किस तरह से रीडिफाइन कर रहे थे? इन्होंने बात की पूजा के साथ और विजय के साथ, तो अगर आप ये पूरा ऑडियो सुनना चाहते हैं आपको 5599 पे BF लिख के भेजना है. इसी के साथ साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस जो हैं ड्राइव शो अपने कुछ स्पेशल गेस्ट को लेकर आते हैं और उस दौरान वो उनके साथ बातचीत करते हैं. सो डेफिनेटली अगर आप वो भी कैचअप करना चाहते हैं, 5599 पे आप ड्राइव लिखकर भेज सकते हैं. मेरी लेफ्ट ओवर की बात जो है अभी बाकी है. और एक ऐसी बात बाकी है जो एक बड़ी अद्भुत सी लेडी के बारे में बात बाकी है. शी इज़ लाइक अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नाउ, आई कैन कॉल हर. इनकी कहानी मैंने फेसबुक पे शेयर करी है, सोशल मीडिया पे शेयर की है, बट क्या कहानी है जिनके पास सोशल मीडिया इतने ज़्यादा अपो नहीं हो, बट एटलीस्ट जानना तो चाहोगे, तो स्टे ट्यून्ड.
4: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

कोई बहुत ज्यादा कुछ अचीव करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और मन करता है ऐसी बातें हमारे पास रोज हमें सुनाई दे तो हम थोड़ा मोटिवेटेड भी हो जाएं। फांगरे की एक लेडी ने अपने 1000 कंसेक्यूटिव अल्ट्रा मैराथन जो हैं ये इन्होंने कवर की और शी बिकेम द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। क्रिमिनल डिफेंस लॉयर शैनन लेलिट इन्होंने 51 किलोमीटर्स एवरी डे फॉर 2 ईयर्स चली, मतलब मैराथन किया एंड 9 मंथ्स 2 ईयर्स 9 मंथ्स थ्रू 9 डिफरेंट कंट्रीज इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और ये वेदर जो था इनको और भी टफ बनाता चला गया। शी सेड आई वाज इन अ फ्लड, आई वाज ऑलमोस्ट आई गॉट हाइपोथर्मिया इन ऑस्ट्रिया, एक्सट्रीम हीट ऑफ 40 डिग्रीज भी इन्होंने अदा की, बट डिस्पाइट ऑल दिस शी चैलेंज्ड इट ऑल। एंड इन्होंने फांगरे की रहने वाली हैं देखिए, और इन्होंने नियरली 3 साल तक कहते पता नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया, और इनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग रही, मेंटल चैलेंज इनके लिए काफ़ी हद तक बना रहा। शी जस्ट वांटेड टू फिनिश इट एंड हैव हर 51 किलोमीटर्स एवरी डे रिकॉर्ड एंड टू मीट द वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड। शी सेड शी हैड टू स्टे विद इन न्यूजीलैंड 24-आवर क्लॉक इवन वाइल ट्रैवलिंग ओवरसीज, विच मेंट कि शी स्टार्टेड एट 6 to 7 AM ऑन 1st of January 2023 एंड देन she stayed in different time zones, so if she traveled she had to be done before a particular time, like in Bali for example you had to finish at 8 PM there at their time. to ye record jo tha initially Candice Bert jo hain US ki, inhone 200 consecutive days lagatar inhone ye marathon kiya tha, but initially she said maine kabhi nahi socha main 1000 din ka marathon karungi, lekin ये इन्होंने 1000 दिन का मैराथन किया। दो शी हैड अप्लाइड फॉर ओनली 250 डेज बट डिसाइडेड टू गो ऑन। व्हाट एन इंस्पायरिंग वुमन, वाओ।

0: Klassiker.
1: Boah.
2: Hau.
1: An Grund.
3: कम्युनिटी में क्या हो रहा है चलिए जान लेते हैं और आपको बता देते हैं कि मोहम्मद सादिक एंड टीम जो है इंडिया से लाइव आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए एट मैनकाओ वेलोड्रोम पार्क में. अब ये एक एनजेड दिवाली जो है ये मनाई जाने वाली है. फर्स्ट 1 PM to 9 PM फ्री एंट्री है और एनजेड आई कम्युनिटी ट्रस्ट एंड AMI आपके लिए लेकर आ रहे हैं. याद रहे कि वेद प्रचार वीक जो है आज से शुरू हो चुका है 4 अक्टूबर तक. 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोई आप पहुंच सकते हैं. 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हो रही हैं ऑफ आर्य समाज न्यूजीलैंड. श्री राम मंदिर में जो है कथा जो है होने वाली है शुरू राम कथा. इसे पूज्य राजन जी जो है ये करने वाले हैं. आप पहुंच सकते हैं 7 से 9 बजे के दरमियान और उसके बाद महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है. तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा इन जगहों पे जाने के लिए. लेकिन आप अगर चाहते हैं हम आपकी कम्युनिटी की आवाज़ बन जाएँ तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, buzz@humfm.com पे आपने हमें ईमेल करना है एंड उसके बाद हम आपके लिए आपकी आवाज़ बनने के लिए तैयार होंगे. याद रहे कि एक छोटा सा टेक्स्ट भी अगर आप करेंगे ना तो भी हमारे लिए वो काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा. हम उसे फॉर्म भी कर सकते हैं बट आइडियली buzz@humfm.com पे हमें आप ईमेल करें.
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर। क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।
1: Bunnings Rewards is a more rewarding way to shop. Every time you shop in-store at Bunnings, you can earn points on every dollar spent and give community groups a helping hand. T's and C's and exclusions apply. Join Bunnings Rewards today and show your manaaki.
0: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
2: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big

0: कीजिए अपना होम लोन अब 500,000 या उससे ज्यादा फाइनेंस वर्ल्ड के साथ एंड यू ऑटोमेटिकली इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू बाली फॉर टू 5 days 4 nights 2 lucky winners हर एलिजिबल होम लोन ऑफ 500,000 या उससे ज्यादा ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ में एंटर करता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई विजिट financeworld.co.nz/bali फाइनेंस वर्ल्ड लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert. Indelible.

0: Recycle Me.
1: रिसाइकिल मी रीयूज मी में एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप चीज़ों को ढूंढते हैं. मैंने आपको जैसे बताया था कि फ्रिज में आप रखें और रोटेट कीजिए खाने को. ईट मी फर्स्ट, एक विजिबल स्पॉट आपको बनाना पड़ता है. रेगुलरली अपने शेल्फ को चेक करना होता है. एक प्रॉपर स्टोरेज जो होता है ना आपका, जहाँ पर आपके लेफ्ट ओवर फ्रेश रहते हैं, उन्हें एयरटाइट कंटेनर में अच्छी तरह से आप ऐड करें. ईट मी के स्टिकर्स लगा दीजिए और उस पर डेट लगा दीजिए तो बेहतर रहेगा. कई बार हम ब्रेड भी खोल लेते हैं ना, उसके ऊपर डेट लिख कर आती है, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में शायद वो भूल जाते हैं. ब्रेड के ऊपर जो वो एक छोटा सा क्लिप होता है वो ज़रूर चेक किया करें. फ्रीज करने का एक लॉन्ग लाइफ ज़रूर होता है, लेकिन कभी कभी जब आप रीहीट करने की कोशिश करते हैं चीज़ को, तो उसको एक राइट टेम्परेचर पर आपको रीहीट करना चाहिए. आइडियली रीहीट जब आप कर रहे हैं, इट शुड बी लेफ्ट ओवर फूड को, इट शुड बी रीचिंग एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सुपर पाइपिंग हॉट, बॉइलिंग हॉट. तो आई होप आप इसी तरह से इस तरह की टिप्स जो हैं हमारे साथ साथ शेयर भी करें, क्योंकि अभी मैंने आपसे जब पूछा था कि कोई लेफ्ट ओवर के लिए टिप बताओ, तो आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच सुनंदा.
2: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए बस मज़ा आ गया आज आपके साथ बात करके एंड आई होप आपके लिए आने वाला हफ्ता और भी ज़ोरदार दमदार और शानदार बना रहे। तो कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार, मेरी मुलाकात आपसे होगी वो दिन कहलाएगा मंगलवार। आपके दिन को और भी मंगलमय बनाने के लिए कितन आ रहे हैं इनका साथ ज़रूर दीजिएगा। सो डू लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड यस इन फैक्ट आई वॉज ऑन सैटरडे मीटिंग अप विद नन अदर देन आई थिंक प्रेम जी आप थे। आपसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और आपको यहाँ तक याद था कि मैं किस तरह से साइन ऑफ भी करती हूँ स्टूडियो से। सो आई फेल्ट यू नो लाइक अ फेदर इन माई कैप एट दैट मोमेंट कि आप जिस तरह से लिसनर बन के ध्यान से सुनते हैं वाकई ही काबिल तारीफ है। सो बिग थैंक यू टू यू प्रेम जी एंड दिस इज़ अ शाउट आउट फ्रॉम मी टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ सेइंग टाटा बाय बाय। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय।

0: with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sasrikaal, salam alaikum, bulab ka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat naye din. नया महीना कहूँ, नया महीना तो नहीं हुआ अभी, वैसे अभी ऑफ कोर्स दो तीन दिन और बाकी हैं, लेकिन यस डेलाइट सेविंग्स जो है वो हो चुकी है, तो एक तरह से एक आर हम आगे बढ़ चुके हैं. तो आई डोंट नो इफ यू वांट टू कॉल इट नया महीना और नॉट, इट्स ओके, बट यस बने रहिए. मैं हूँ यहाँ पे अभी से लेके 3 बजे तक और बहुत सारी बातें करने वाले हूँ. सबसे पहले बहुत ही प्यारा गाना मैं चलूँगा और एक थोड़ा सा एनर्जेटिक वाला, और उसके साथ ही हम आपसे और भी बातें करेंगे, शेयर करेंगे बहुत सारी चीज़ें. होमसिक रेमेडीज़ के लिए आप मुझे मैसेज भेजिए, कुछ ऐसी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं यहाँ पे हमारे बीच, जिस पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे. एंड यस 5599 इज़ द नंबर जहाँ पे आप मुझे मैसेज भेजेंगे, एंड 0800 004 866 इज़ द नंबर जहाँ पे आप मुझे कॉल करेंगे. तो अभी के लिए एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत गाना. एंड होमसिक रेमेडीज़, मेक श्योर टू सेंड मी ऑन 5599.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए होम सिक रेमेडीज की बात कर लेते हैं। अभी एक मैसेज मैंने पिक किया है एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक और न्यूज में आपको बताता हूँ। हनुमान अंश इज एक्चुअली डूइंग सो वेल दैट इवन द डायरेक्टर हैज सेड समथिंग एंड उन्होंने कुछ बहुत ही प्यारी चीज अनाउंस की है। मतलब इतनी प्यारी चीज कि आपका सच में दिल इतना ज्यादा सही खुश हो जाएगा और आप मतलब आप कहना चाहोगे कि यार हाँ, मतलब डिजर्व। वी आर मेकिंग, आई मीन नॉट वी, वी आर मेकिंग, ऑब्वियसली वी आर नो वन टू मेक हर फेमस और एनीथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट शी डिड, बट अगेन वी आर फॉलोइंग द राइट पीपल एंड यू नो वी आर encouraging her. So, क्या बोला है, क्या किया है, क्या decision लिया है, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही जल्द। बट उससे पहले ये message पढ़ लेते हैं। Message ये है कि संदीप भाई ने भेजा, yesterday I had a massive craving for something sweet in this cold winter weather, so I bought a $16 box of jalebis from local sweet shop. I took a bite expecting that hot crunchy syrupy burst, but it was stone cold, rock hard and tasted like chewing sweet rubber. Why you didn't call them and just ask for the replacement? I mean, that's easy thing you can do. You were expecting something, and that if the shop is famous for that, why not? मतलब मेरे को ये चीज बहुत लगती है that people don't complain. दे बोला हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी गलती नहीं है। बट इफ यू डोंट टेल, आई मीन लाइक ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी डू मेक मिस्टेक्स, बट इफ यू डोंट टेल डेफिनेटली दे वॉन्ट चेंज, राइट? सो वी आर कंप्लेनिंग और वी आर टेलिंग देम जस्ट टू मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन टू द नेक्स्ट पर्सन, दैट इज वॉट वी शुड डू। बट यस, इन्होंने ये भी लिखा है, गेटिंग देम being hot and in a paper bag and heating them crisp right there, paying $16 for cold chewy sugar rings in Auckland completely ruined my mood and made me miss home so badly. I feel sad for you, bro, Sandeep bhai. But yes, the thing is, मैं तो मैंने जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि दैट इज द इजी वे, नॉट इजी एक्चुअली, बट दैट इज द क्विकेस्ट थिंग यू शुड डू। आप जैसे ही बाइट करें जस्ट कॉल देम एंड आई एम प्रीटी श्योर यू नो गुड रेस्टोरेंट्स एंड यू नो गुड पीपल दे ऑलवेज आस्क ओके प्लीज कम ओवर एंड वी विल रिप्लेस इट, सो समथिंग लाइक दैट। सो अगर उनके पास नहीं होता तो वो रिफंड भी कर देते हैं। सो मूड खराब करने से अच्छा है कि आप खुद बाहर जाएं एंड जस्ट आस्क देम फॉर द रिप्लेसमेंट और जस्ट आस्क देम फॉर द रिफंड, दैट इज द इजी थिंग you could do. And but obviously hatash na hoye, because that doesn't happen to every kind of restaurant and that doesn't happen to har jagah aisa nahi hota, like it doesn't happen to any other places as well. So yes, keep trying until you find, and maybe ho sakta hai kabhi kisi ka din bhi kharab hota hai yaar, I mean kabhi kabhi hota hai, like you know, because I know that there was one spot, I won't name it, but mujhe bahut pasand tha, as I said that biryani, I love biryani. बट वो एक दिन इतना गंदा वाला बिरयानी था, लिटरली आई वॉज फीलिंग लाइक ये क्या था, बट ग्लैड कि मैंने वही किया जो अभी मैंने आपको सजेस्ट किया, मैंने जस्ट कॉल किया और एक पोलाइटली मैंने बोला कि यार ब्रो आई एम सो सॉरी बट आई एक्चुअली फील द चिकन इज लाइक यू नो इट्स नॉट वेरी प्रॉपरली कुक्ड एंड समथिंग लाइक दैट। सॉरी माय बैड। सो द बेस्ट थिंग व्हाट दे डिड इज दे जस्ट आस्क्ड मी okay can you come over and then we'll just replace it and I said bro I don't live nearby I live in papakura so, matlab maine obviously jhoot bola papakura mein rehta tha and matlab mera ye tha ki mera mood off ho chuka tha bahut hi zyada and I don't feel like you know going maine kaha chalo theek hai matlab complain kiya tha but I wasn't expecting anything ki wo mera replace karenge ye sab karenge matlab itna dur kaun jayega yaar chodo abhi late bhi ho gaya tha it was I think around what 11:30 और वो बंद भी कर चुके थे, ऑलमोस्ट बंद, पैकिंग ही कर रहे थे वो। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया ओके डोंट वरी ब्रो यू जस्ट सेंड मी द एड्रेस एंड वन ऑफ आवर गाय विल कम ओवर एंड ड्रॉप इट एट योर होम एंड आई वाज लाइक भाई अब क्या करूं, मतलब वो इतने तक हो गए, लाइक सो काइंड ऑफ देम टू डू दैट, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज भी मैटर करती है ना कि आप कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हो एंड दे ऑलवेज केप्ट इट लाइक दैट। सो दे सेंट वन गाय एंड ऑब्वियसली आई वॉजंट इन पापाकुरा, तो मैं उसमें क्या करता, तो मैंने अपने दोस्त का एड्रेस दे दिया एंड इवन दो नेक्स्ट डे मैं जाने वाला था उसके घर, तो मैंने कहा तो भाई रख अंदर, मैं कल आऊँगा, कल सुबह ले लूँगा। सो या सो स्वीट ऑफ देम यार, सो स्वीट ऑफ देम। फिर मैंने उनसे पूछा भी था ब्रो इसका क्या करूँ, तो इसको बोला यू हैव बोथ, यू कीप बोथ। सो या आई मीन लाइक मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि उनको कहीं झूठ बोल के कहीं और बुला दो. मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कोई चीज सही नहीं है, जस्ट आस्क देम, जस्ट पोलाइटली आस्क देम, टेल देम सो दैट इट डजंट हैपन टू द नेक्स्ट वन. अगर वो सही होंगे, काइंड होंगे, तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू फॉर द रिप्लेसमेंट. बट थैंक यू संदीप भाई आपके मैसेज के लिए, बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया था बात करने के. लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
3: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for Nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
4: The shelves are filling up at Bunnings with brand new Bunnings Rewards. Whether you're just popping in or stocking up for a project, a trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Every tap, tape, bolt, barbecue, shrub, drill, door, paint or mop can all earn you Bunnings Rewards. It's easy to keep track of. Simply download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. T's and C's and exclusions apply. Join Bunnings Rewards today. Bunnings
5: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.

0: Bash ends tonight at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
1: Oops, the recipe says we need full fat cream.
2: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
3: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
4: Lunchbox with Ketan.
5: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe. Hum.
6: Well, jaisa ki maine kaha tha, bahut hi khoobsurat baat abhi hui hai from Bollywood. काफी इंस्पायरिंग भी है. हनुमान अंश ने सचमुच इतना बढ़िया काम कर दी है. इतने कम बजट में इतनी बढ़िया रकम जो है उन्होंने हासिल की है. सारे लोगों को पसंद आ रहा है. आई हैव नेवर सीन एनीवन हु हैज गिवन द नेगेटिव रिव्यू अबाउट द फिल्म. हनुमान अंश अगर यहाँ पे आपने देखी है तो मुझे भेज दीजिए 5500 टेक्स्ट रिगार्डिंग कि आपको ये कैसी लगी. सो यस, 2026 की बायोग्राफिकल स्पिरिचुअल ड्रामा डायरेक्टेड बाय डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी और दैट क्रॉनिकल्स द अर्ली लाइफ ऑफ द रिवर्ड सेंट नीम करोली बाबा, जो कि एक काफी मॉडेस्ट उस पर बजट करीबन 2 करोड़ में बनी है. और फिल्म ने इनिशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, इंक्लूडिंग टू फाइंड ओटीटी डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल. बट सडनली विद माउथ पब्लिसिटी बिकम अ हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस मिरेकल आफ्टर इट्स थिएट्रिकल रिलीज. करीबन 380 करोड़ यहाँ के इंडिया के अभी तक कमा चुकी है, जो कि लिटरली 15,000 से 20,000% ज्यादा है इन कंपेयर टू सिर्फ 2 करोड़ में बनी है. जी हाँ. सो यस, और ये सारी चीजें हुई बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ. सो अगेन इट सेज दैट अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली पीपल विल लव इट एज लॉन्ग एज इट रीच टू द राइट पीपल. बियॉन्ड इट्स कमर्शियल सक्सेस, जो फिल्म है काफी एक लाइफ चेंज की है एक शख्स की. उनका नाम है सुनील लोधी. ये 25 साल के हैं और एक ट्रेडिशनल फोक सिंगर है जो कि मध्य प्रदेश है और काफी विजुअली इम्पेयर्ड भी है बचपन से. जब से पैदा हुए हैं तब से वो देख नहीं सकते हैं, बट उनमें खूबी बहुत अच्छी है गायकी में. सो यस, उनका जब वायरल जो ये गाना है सोशल मीडिया वीडियो ऑफ लोधी सिंगिंग डिवोशनल भजन, ये उनका जब वायरल हुआ था तो लोकल ट्रेन में ही हुआ था. तो ऑब्वियसली इन्होंने डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर है उनकी नज़र में ये आए, उन्होंने देखा. और फिर सबसे खास बात यहाँ पे हुई है, जो प्रोड्यूसर है उनका नाम है अनुप्रिया नागर. जी हाँ, अनुप्रिया नागर है. और उन्होंने मैंने तेरे ही भरोसे ये गाया था ट्रेन में, और कहीं इतना ज्यादा इफेक्ट किया उन्होंने अनुप्रिया नागर को कि उन्होंने लिटरली ये बोल दिया दैट आई विल टेक केयर ऑफ हिज पर्सनल एज एन स्पॉन्सर एंड अरेंज स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट विथ टॉप आई स्पेशलिस्ट इन मुंबई इन एन एफर्ट टू हेल्प रीस्टोर लोधीज आईसाइट. यानी कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो लोधी जो बचपन से कभी देख नहीं सकते थे वो फाइनली देख पाएंगे दुनिया. एंड यू नेवर नो, क्या पता वो खुद भी वो फिल्म देख लेंगे किस फिल्म के वजह से ये चीज पॉसिबल हुई है. सो ये सच अ नाइस गेस्चर ऑफ अनुप्रिया एंड द टीम कि उन्होंने ये चीज सोचा है. एंड एज आई सेड बिफोर एज वेल कि इन्होंने वैसे भी अनाउंस किया था कि शी डजंट नो व्हाट टू डू विद सो मच ऑफ मनी, सो शी अनाउंस दैट आई विल स्टार्ट डूइंग चैरिटी. So this is the first step to do so. So बताइए आप मुझे कितने टाइम पहले आपने ऐसी कुछ बात सुनी थी, आप मुझे 5599 पे बता सकते हैं.
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं अभी की आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की खबर। जी हाँ, आज के दिन 1899 की ये बात है जब न्यूजीलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट करते हुए साउथ अफ्रीका में बॉय वॉर के लिए ट्रूप्स भेजने का डिसीजन लिया। प्रीमियर रिचर्ड सेडन ने पार्लियामेंट में प्रपोजल रखा जिसे ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला। पहला कॉन्टिजेंट जो था वो 215 यानी कि 215 माउंटेड राइफलमैन का था। 21 अक्टूबर 1899 को वेलिंगटन से उनका ग्रैंड फेवल भी हुआ। इवेंचुअली न्यूजीलैंड ने अराउंड 6500 वॉलंटियर्स और 8000 हॉर्सेस साउथ अफ्रीका भेजे। वॉर में 71 सोल्जर्स एक्शन वाउंड हुए, 26 एक्सीडेंट्स में और 133 डिजीज, मेनली टाइफॉइड से मरे। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका वॉर में इन्वॉल्वमेंट ब्रिटिश एम्पायर के साथ लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग पब्लिक पेट्रियटिज्म से क्लोजली कनेक्टेड था।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: दिस वन कम्स स्ट्रेट फ्रॉम आउट ऑफ द डांसर।

0: school.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Celebrate Macca's 50th with the Meal Steal Combo for $17. That's a Big Mac, cheeseburger, fries, a soft drink, plus a birthday bonus from the warehouse or time zone for a limited time. The Meal Steal Combo. On now at Macca's. T's and C's apply.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
7: This is Warehouse Country, where the best price on nature's fresh bread, the best price on eggs, and the best price on milk in the country can only be found at The Warehouse. Obviously.
1: Lunchbox with Kathan.
8: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी. हम
9: चटनी शॉट्स. Well, चलिए बात कर लेते हैं अब फटाफट से न्यूज की. फटाफट न्यूज बोले तो चट्टी शॉट्स में यहाँ पे मैं पढ़ूंगा एक से बढ़कर एक खबर है. सबसे पहले तो टीवी स्टार की प्रॉपर्टी कंपनी पर फाइन. टीवीएनजेड शो रेंटर्स में नजर आए प्रूडेंस मॉरल की गुड गर्ल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को टेनेंसी लॉ ब्रीचेस के लिए $5,877 पे करने का ऑर्डर मिला है. केसेस 20 टेनेंसी से रिलेटेड था इंक्लूडिंग एन अनलॉफुल टर्मिनेशन. ग्रॉसरी प्राइसेस की बात करें तो पिक्चर थोड़ा टफ है. 2016 से बटर 157%, व्हाइट ब्रेड 120% और डीजल फिल अप 141% तक एक्सपेंस हो चुका है, एक्सपेंसिव हो चुका है. रिसर्च के मुताबिक 46% कीवीज कहते हैं कि वो 10 साल पहले से वर्स ऑफ फील करते हैं. जीबी नॉर्थलैंड आयरलैंड में टेंशन हाई रहे हैं जहां ग्लोबल न्यूज है ऑफ कोर्स, जहां थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर ने पोर्ट डाउन में कंट्रोवर्शियल ऑरेंज ऑर्डर परेड से ब्लॉक किया. परेड को कोर्ट ने लेट नाइट हियरिंग के बाद परमिशन दी थी. टेक्नोलॉजी की तरफ से एआई को लेकर बड़ी खबर, थोड़ा कंसर्न भी है. रिसर्चर्स ने पॉसिबल रिस्क में एआई का न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट या बायोलॉजिकल थ्रेट्स में मिसयूज होना इंक्लूड किया है. एक्सपर्ट्स के बीच ये डिबेट चल रही है कि वर्स्ट केस सिनेरियो कितना रियलिस्टिक हो सकता है. स्पोर्ट्स में सिल्वर फोन अपडेट. सिल्बी रिकेट ने कॉन्सोलेशन कप सीरीज के लिए नेशनल टीम में कमबैक किया है, एंडिंग हर हायटस. इलेक्ट्रिक एवेन्यू फैंस बिवेयर. सोल्ड आउट क्रैशर फेस्टिवल के पासेस ऑनलाइन फेस वैल्यू के ऑलमोस्ट 4 टाइम्स अराउंड $2,000 तक रीसेल किए जा रहे हैं. कंज्यूमर न्यूजीलैंड ने फैंस को ऑथोराइज्ड सेलर से ही टिकट लेने की वार्निंग दी है, अदरवाइज स्कैम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है. और बिजनेस की तरफ से अगर देखें तो कॉमर्स कमीशन के अकॉर्डिंग कार्टेल एक्टिविटी स्पेशली बिड रिगिंग टैक्स पेयर्स को अराउंड $360 million अ ईयर का हिट दे सकती है. और ना मानु कोरेरो में कंट्री भर से 60 यंग स्पीच मेकर्स नेशनल कंपटीशन के लिए काई कोहे में गैदर होने वाले हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है.
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: The beat of Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Well, एक रहा मेरा सवाल. ये सवाल है काफी इंटरेस्टिंग. Let's see कि कौन कौन यहाँ पे जानते हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार का आज जन्मदिन है. एक बॉलीवुड सुपरस्टार, एक बॉलीवुड की क्वीन ऑफ वॉइस, नाइटिंगेल भी कहा जाता है उन्हें, उनका भी आज जन्मदिन है. और साथ में एक जिन्हें पूछते हैं उनका भी आज जन्मदिन है. तो यस, आप मुझे 5599 पे बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ. वुड लव टू हियर फ्रॉम यू.

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। आज 16 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 10% चांस है बारिश के। आज थोड़ी विंड भी हो सकती है, 1.1 mm रिकॉर्ड होगा और आज का सेंसर का 723 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वेल यस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। अगर आप मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप मुझे अभी भी ज्वाइन किया है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस बने रहिए, थोड़ी देर में हम बात करेंगे लंच टाइम रेंट लाइन की और उसके साथ ही स्पोर्ट्स की, और साथ में स्पोर्ट्स नहीं एक्चुअली बॉलीवुड की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की तो बताऊंगा मैं, लेकिन यस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग टाइम टू हैव डिस्कशन ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। सो यस बने रहिए, शुरुआत करते बहुत ही खूबसूरत गाने से।
0: बचाओ क्या,